मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो चुके हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

एक राष्ट्र, एक भूमि, एक परंपरा, अनेकता में एकता ही मूल मंत्र है भारतीयता का। जहां की विविधता जितनी बहुरंगी है, एकता उतनी ही सुदृढ़।

समस्त सृष्टि सुबह का उजियारा जीवन का स्पंदन जिससे पाती है, हमारी आस्था उसके ही जागने के इंतजार में है, चाह में है, इस भरोसे के साथ कि ये सुबह आस की लाली लेकर आएगी, गहन अंधकार भीतर और बाहर के दूर होंगे।

हमारी श्रद्धा ईश्वरीय सत्ता को विविध रूपों में देखती और पाती है, अनेकानेक रूपों में पूजती और ध्याती है। हर भाव, हर क्रिया, हर एक कदम उसके प्रति हमारा वो विश्वास है जो हर बिगड़ी बनाता है।

समय काल के परे वह परम शक्ति निर्वाध रूप से जगत और जीवन को पालित और पोषित कर रही है। समय धार में बहते हम विश्वास की टेक लिए बढ़ रहे हैं गंतव्य की ओर। ये गति और आधार बने रहें, इसके अभिलाषी हैं।

जो आदि अनंत है, जो सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वदा है, जिसमें समस्त सृष्टि ही समाहित है, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका गुणगान इस वाणी से परे है, फिर भी निवेदन है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की ये दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा?

0: अभी आपने श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: अहंकार बड़े से बड़े गुण पर भी पानी फेर देता है। इस संबंध में एक प्रकरण दृष्टव्य है। एक नगर में एक बड़ा धनिक सेठ, बड़े धर्मात्मा दानी

0: आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: अहंकार बड़े से बड़े गुण पर भी पानी फेर देता है। इस संबंध में एक प्रकरण दृष्टव्य है। एक नगर में एक बड़ा धनिक सेठ बड़े धर्मात्मा दानी के रूप में विख्यात था। उसे गर्व था कि इस इलाके में उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। उसके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा। एक बार एक साधु उसके दरवाजे पर आया। धनिक सेठ ने पूछा, महाराज आज्ञा करें, क्या इच्छा है? साधु बोला, तू मुझे क्या दे सकता है? सेठ बोला, महाराज आप नगर के सबसे बड़े दानी के द्वार पर खड़े हैं, जहां से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु हंसा और बोला, जो मुझे चाहिए वो तो मैं तुझसे ले ही लूंगा। पहले तू अपने भवन के पीछे की गली में काम कर रहे मजदूर से मिलकर आ। धनिक साधु की बात मानकर जब अपने भवन के पीछे की गली में पहुंचा, भोजन का समय हो गया था। सो मजदूर ने काम बंद करके हाथ मुंह धोए और जैसे ही उसने भोजन की पोटली खोली, एक कुत्ता आया और उसके सामने खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। मजदूर ने एक रोटी पोटली से निकालकर कुत्ते को दे दी। इससे पहले कि मजदूर अपना भोजन शुरू कर पाता, कुत्ते ने झटपट दी गई रोटी खत्म कर दी और फिर से उसके आगे दुम हिलाने लगा। मजदूर ने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। अब पोटली खाली थी। मजदूर ने पानी का लोटा उठाया, पानी पिया और ईंट के ढेर से टिक कर कुत्ते को रोटी खाते हुए परितोष के साथ देखने लगा। धनिक सेठ ये सारा दृश्य अपने वाहन में बैठा बैठा देख रहा था। वो वाहन से उतरकर मजदूर के पास पहुंचा, बोला, ये तुमने क्या किया? मजदूर ने हैरानी में प्रतिप्रश्न किया, क्या किया? धनिक ने मजदूर से दूसरा प्रश्न पूछा, घर से कितनी रोटियां आई थीं? दो, मजदूर ने उत्तर दिया। और तुमने दोनों रोटियां कुत्ते को खिला दी? बड़े पागल हो। मजदूर हंसकर बोला, दुनिया की नजर में मैं पागल हो सकता हूं, एक राज की बात बताऊं? आज जब मैंने भोजन की पोटली खोली ही थी, ये कुत्ता मेरे पास आ गया। इससे पहले ये कुत्ता मेरे पास कभी नहीं आया था। मुझे लगा आज ये भोजन इसके लिए ही आया है, सो जिसके लिए भोजन आया था मैंने उसे दे दिया। मजदूर का उत्तर सुनकर धनिक सेठ का सिर झुक गया। लौटकर उसने साधु के चरण पकड़ लिए, बोला, प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। अहंकार की चादर ने मुझे इस तरह घेर लिया था कि मैं अपने से बाहर देख ही नहीं पाया। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं चलता हूं, मुझे तुमसे जो लेना था वो मुझे मिल गया। धनिक सेठ के अहंकार का नाश हो चुका था। अब उसने ये जान लिया था कि कोई किसी को अपना कुछ नहीं देता, जो जिसका होता है वो उसे मिल जाता है। हम सिर्फ माध्यम भर हो सकते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज विषय है सटीक खेती हेतु उन्नत कृषि उपकरण। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिलीप जाट।
2: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सटीक कृषि क्या है, सटीक कृषि का आशय यह है कि हम कृषि में उपयुक्त तो होने वाले विभिन्न प्रकार के हमारे उर्वरक तथा पानी या अन्य प्रकार के जो हमारे बीज या इस प्रकार के कृषि आदान हैं, इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, इनका सही मात्रा में सही तरीके से सही जगह पर इनका उपयोग, यही सटीक कृषि है। जैसे कि प्रायः हमने देखा होगा कि खेत में कई प्रकार की विविधता होती है। एक हेक्टेयर का अगर हम खेत

0: तो वो एक समान नहीं होता, किसी क्षेत्र में हमें अधिक उपज प्राप्त होती है, किसी हिस्से में हमें कम होती है। तो ये जो विविधता है इसका पता लगाना और उसकी विविधता के अनुसार ही हमें अलग अलग प्रकार के आदानों का उपयोग करना है, यही सटीक कृषि के अंतर्गत आता है। और आज का जो हमारा विषय है कि ये सटीक कृषि यंत्र किस प्रकार से खेत बचाओ अभियान में सहायक हो सकते हैं। तो खेत बचाओ अभियान जो है 1 जून से 30 जून के मध्य, इसका मुख्य उद्देश्य है खेती को उर्वरक से असंतुलित उपयोग से बचाना, साथ ही साथ सिंचाई के सही तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे कि हमारा कम से कम सिंचाई की लागत आए, साथ ही हमारी कृषि को टिकाऊ बनाना ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है कृषि से मुनाफा कमा सके और उसे हम उत्पादन ले सकें जिससे कि हमें अन्य स्रोतों पर निर्भर ना होना पड़े। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम अलग अलग सटीक कृषि यंत्रों की अगर बात करें तो हम चाहें तो खेतों को तैयार करने के लिए लेजर लैंड लेवलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो खेत है वो समतल होता है, एक समान रूप से मिट्टी जो होती है समान रूप से बिखरी हुई होती है पूरे खेत में। तो इसके बाद अगर हम कोई भी यंत्र चलाएंगे तो बड़ी आसानी से हमारे कृषि कार्य होंगे और एक समान पूरे क्षेत्र से हमें उपज प्राप्त होगी, साथ ही साथ किसी हिस्से में पानी का भराव भी नहीं होगा। इससे आगे और अगर हम बढ़ते हैं तो हम इसमें एक ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम भी होता है जिससे ट्रैक्टर क्या है एक कतारी में सीधे चलता है। इससे चलने का फायदा ये है कि ये GPS आधारित एक तकनीक होती है जिससे कि हम खासकर किसी भी प्रकार के यंत्रों का जब उपयोग करते हैं तो एक बार हमें चला कर जब दूसरा पास वापस हम चलाते हैं तो कुछ ओवरलैपिंग होती है, इसको हम कम किया जा सकता है इस प्रकार के यंत्रों के माध्यम से। बुआई के लिए हम चाहे तो प्लांटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटर जो है ये समान दूरी पर सही मात्रा में बीजों को जमीन में डालते हैं, तो इससे आप बीजों की बचत भी होती है साथ ही साथ पौधों को समान जगह मिलती है वृद्धि होने के लिए, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे हम खरपतवार प्रबंधन की अगर बात करें तो कई तकनीकें ऐसे विकसित हो चुकी है, ऐसे गैजेट्स बन चुके हैं जिनसे कि आप फोटो कैप्चर करके इमेज लेके आप ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का खरपतवार हमारी भूमि में है, तो हमारी फसलों के साथ किस प्रकार का खरपतवार है, तो इसका निदान बड़ी आसानी से किया जा सकते हैं। खाद के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो खाद का सही इस्तेमाल बुआई के समय पर जब बीज हम खेत में डालते हैं उसी समय पर खाद भी, खाद का एक तिहाई हिस्सा उसी समय हमें ज़मीन में डालना होता है, तो इसके लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सही जगह पर खाद को ज़मीन में डालती है। अगर इसके पश्चात जब फसल 1 महीने की हो जाती है तब हमें खाद की आवश्यकता है तो उसके लिए हमने कुछ इमेज आधारित या फोटो आधारित कुछ मशीनें डेवलप की है जिससे आप फसल की फ़ोटो लेके उसको कितने खाद की आवश्यकता है उतना ही खाद वो वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग आसानी से कर सकती है। स्पेड मीटर एक यंत्र होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेंट कितना है पत्तियों में ये पता कर सकता है, उसके आधार पर भी हम कम या ज़्यादा खाद की मात्रा को हम पौधों में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि उपज की, कि उपज कितनी है इसका अगर हमें आकलन करना हो तो ड्रोन आधारित तकनीकों का उपयोग करके आप चाहें तो उपज की गणना कर सकते हैं। अगर बगीचों में आपको ये पता करना हो कि हमें अलग अलग बगीचों से कितना उत्पादन हमें पौधों से मिल रहा है या पूरे बागान से कितना उत्पादन मिलेगा, तो उसके लिए भी कुछ तकनीकी विकसित की गई है जिससे कि आप फसल की फ़ोटो लेके कुछ पोर्टल ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आप अपलोड करिए या स्मार्टफोन से लेके एक होता है उसमें आप अगर चाहें तो ये गणना कर सकते हैं कि कितनी उत्पादन इससे हमें मिल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी तकनीकी है, छोटे किसान या बड़े किसान प्रायः अगर इन प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो इरिगेशन से कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, सेंसर आधारित प्रणालियाँ भी होती है जिनके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि कब फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, तो जैसे ही आप सिंचाई शुरू करेंगे और कब बंद करना है ये सेंसर आधारित IoT आधारित जो यंत्र है इनसे आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार की कई तकनीकी है जिनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि चर्चा संपन्न हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था सटीक खेती हेतु उन्नत कृषि उपकरण। वार्ताकार थे डॉक्टर दिलीप जाट। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार निद

0: नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज आप सुनेंगे कथक शैली की जानी मानी नृत्यांगना सुश्री मंजरी चतुर्वेदी से एक विशेष मुलाकात। नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर प्रोफेसर नीरज कुमार राठौर, विभाग अध्यक्ष कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से नैनो टेक्नोलॉजी पर विशेष चर्चा। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 के प्रदेश के लेखकों की प्रथम पांडुलिपि अनुदान योजना हेतु आमंत्रित करने हेतु साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश विकास दबे से बातचीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुनिएगा 8:30। 9:15 पर गांधी चर्चा का प्रसारण होगा। फिल्म संगीत 9:30 और 10:00 जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी। 10:05 पर कार्यक्रम महिला संसार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला का समय होगा 10:30। इसमें आज आप सुनिएगा राजेंद्र ब्यास का वायलिन वादन। राग होगा बैरागी भैरव। 11:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

बारह बजे आपके फरमाइश कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक भुवन मोहिनी का 8वां भाग। 1 बजे महिला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी छतरपुर की। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी छतरपुर की। आपकी फरमाइश कार्यक्रम 2:30 पर। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी छतरपुर की। फिल्म संगीत 5:30 और 6:30 और 9:45 पर। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर फिल्म संगीत प्रसारित होगा। 9:30 खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज आप सुनिएगा भेंट वार्ता बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में कलाकार होंगे राजेंद्र व्यास। आप सुनिएगा इनका वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। श्रोताओं, ये थे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आज़ादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो, आधी शताब्दी बीत गई है। पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आज़ादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आज़ादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, वो जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए। और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित

0: करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था की केंद्र माँ शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सकें। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न ₹200 का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
2: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक ही चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन पिल गए धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोधी नहीं हुआ, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है कि फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में क्या मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहाँ पे शुरू हुआ। अच्छा इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूँ मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट, एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। 4-5 चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार ID बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और PNG कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय ITI में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगर मालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और ADP योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के 2रे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के 1st और 2nd श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष SN मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए

भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के मेहदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

सुबह की ताजगी, संगीत की मधुरता और आपके शहर की धड़कनों के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक नई मुलाकात। खबरों की विश्वसनीयता, गीतों की मिठास और रोचक जानकारियों के संग अगले कुछ पल रहेंगे आपके नाम। आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मेघा तिवारी और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। कभी कभी मौसम बिल्कुल हमारे मन जैसा हो जाता है। आज भोपाल की फिजाओं में भी कुछ ऐसा ही एहसास है। न बारिश खुलकर हो रही है, न धूप पूरी तरह निकली है। बादल हैं, ठंडी हवा भी है और एक अनकहा सा इंतज़ार भी। शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम सब किसी न किसी बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी अच्छी खबर का, किसी अपने के फ़ोन का, किसी अधूरे काम के पूरे हो जाने का, या फिर बस उन दिनों का जब मन थोड़ा हल्का और खुश हो जाए। लेकिन इंतजार हमेशा बेचैनी नहीं होता, कभी कभी उम्मीद का दूसरा नाम भी होता है। भोपाल की झीलों पर तैरती ये ठंडी हवा जैसे याद दिलाती है कि हर मौसम बदलता है। उमस के बाद बारिश आती है और बादलों के बाद धूप निकलती है। इसलिए अगर आज आपके मन में भी कोई इंतजार है तो उसे थोड़ा सा भरोसा भी दीजिए। हो सकता है कि जिस खुशी की आहट आप सुनना चाहते हैं वो आपके बहुत करीब हो। फिलहाल इस खूबसूरत मौसम का आनंद लीजिए एक प्याली चाय के साथ। कुछ पल अपने लिए निकालिए और मुस्कुराइए, क्योंकि कभी कभी खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की नहीं, बस एक अच्छे मौसम की ज़रूरत होती है।

न्यूज़ ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल। वक्त मिलाइए, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:27 होने को हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बताते हैं। पहली खबर है, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। नशा मुक्ति के लिए अब हर्बल थेरेपी, काल मेघ, कुटकी और भुआ मलकी जैसी बूटियों से मिट रहा है शहर का नशा। नशे की लत न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार का नाश कर देता है। नशा आर्थिक क्षति के साथ साथ मानसिक और शारीरिक क्षति भी पहुंचाता है। ऐसे में लोग अपने परिजनों के नशे की लत को दूर करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र या अस्पतालों में ले जाते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद ने इस समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण कर दिया है। अब बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आयुर्वेद के जरिए व्यक्ति नशे से मुक्त हो सकेंगे। दरअसल पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने प्राकृतिक जड़ी बूटियों के अनूठे संयोजन से विशेष आयुर्वेदिक नुस्खे तैयार किए हैं। डॉक्टर्स का दावा है कि इन औषधियों के इस्तेमाल से शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव रिएक्शन नहीं होगा और मरीजों को सुरक्षित तरीके से नशे से मुक्ति मिल सकेगी। आज नशा मुक्ति दिवस पर संस्थान जागरूकता शिविर के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। आमतौर पर नशा छोड़ने के दौरान मरीजों को मानसिक तनाव, घबराहट और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंडित खुशीलाल चिकित्सालय के विशेषज्ञों ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया है। अगली खबर मौसम की। एक दिन पहले मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से प्रवेश करने वाला मॉनसून फिलहाल थम गया है। पिछले 24 घंटे में ये एक जगह अटक गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून अगले 24 से 48 घंटे में भोपाल पहुंच सकता है। हालांकि इस दौरान प्रवेश के 34 जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिन इलाकों में मॉनसून पहुँच चुका है। शुक्रवार को भोपाल समेत प्रदेश के 70 हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा के येलो अलर्ट जारी किए जाएंगे, जबकि 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। अगली खबर है, पासपोर्ट बनवाना 1 जुलाई से ₹1,000 महंगा हुआ। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर पासपोर्ट शुल्क ढांचे में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2026 से 36 पेज वाले सामान्य नए पासपोर्ट या री इशू के लिए शुल्क ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हो गया है। इसी श्रेणी में तत्काल सेवा के लिए ₹5,000 देने होंगे। विदेश मंत्रालय ने 20 जून की अधिसूचना गुरुवार को जारी की। पासपोर्ट की वैधता में बदलाव नहीं किया गया है। वयस्कों के पासपोर्ट 10 साल तक वैध रहेंगे। नाबालिगों के पासपोर्ट 5 साल या 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक जो पहले मान्य रहेगा। पासपोर्ट फीस में पिछली बार बढ़ोतरी 2012 में की गई थी। अगली खबर है, आज मुहर्रम के अवसर पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो थोड़ा पहले निकलें, बदला है रूट। मुहर्रम पर आज निकलने वाले ताजिए जुलूस को देखकर ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक पुराने शहर और VIP रोड क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। पुलिस ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से VIP रोड और जुलूस मार्ग का उपयोग न करने की अपील की है। और 25 जून तक शहर में डेंगू के 40

केस पिछले साल से दुगने। राजधानी में बरसात के पहले डेंगू और मलेरिया के मामलों की तस्वीर पिछले साल की तुलना में बदली हुई है। मलेरिया के मामले घटे हैं, लेकिन डेंगू मरीज लगभग दुगने हुए हैं। राहत सिर्फ इस बात की है कि बड़े पैमाने पर जांच के बावजूद संक्रमण नियंत्रित है। करीब 2,00,000 घरों में हुए सर्वे में 4,480 घरों में मच्छरों का लार्वा मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई और अगस्त के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आप भी रखिए अपना ख्याल, और ये थी कुछ प्रमुख खबरें। अब एक और गीत का वक्त हो चला है, लीजिए सुनिए फिल्म का नाम यारा दिलदारा।

0: नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोस्तों, अब हो चला है वक्त आपको एक बातचीत सुनवाने का, जो कि हमने की है नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में उभर रही है, जैसे चिकित्सा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और एस्थेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में इसके व्यापक उपयोग की संभावनाएं हैं। हमने ये जो बातचीत की है, ये NITRRR शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो इंस्टीट्यूट भोपाल में है, वहाँ के प्रोफेसर से की है। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर नीरज राठौर। मैं NITRRR भोपाल में प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में।
0: NITRRR जो है, ये किस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया है और यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ चलती हैं?
1: मैडम, बेसिकली NITRRR मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: इसका मैंडेट ये है कि जो भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के टीचर आते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो भी होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम ये करते हैं, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के हों या पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं। जो भी नए भर्ती होते हैं, नए आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली। और ये ऑल ओवर इंडिया में NITRR चार संस्थान हैं, एक भोपाल में है, एक चेन्नई में है, एक कोलकाता में है और एक चंडीगढ़ में। चारों का मैंडेट अभी यही है। अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो चुका है इस साल से, बीटेक एमटेक और पीएचडी 9-10 डिपार्टमेंट में, तो अब वो भी चालू हो गया पैरेलली।
1: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बदलते दौर के साथ सभी जगह का करिकुलम चेंज हो रहा है, इसमें एक नैनो टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा शब्द है जो कि जिज्ञासा का एक सबब है। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी और किस तरह से वो हम सबकी लाइफ पर इम्पैक्ट कर रहा है?
0: बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी नाम से ही हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि नैनो मीन्स बहुत छोटी चीज़, बहुत छोटी। बहुत छोटी मीन्स इतना छोटा होता है कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल या किसी भी धातु को उसके नैनो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नैनो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग और साइंस हम नई नई चीज़ों में, वैज्ञानिक चीज़ों में यूज़ करते हैं, जिससे हमें हर फील्ड में इनको यूज़ करके उसमें एफिशिएंसी मिलती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो मटेरियल जो काम करता है उसका नैनो पार्ट बहुत ज़्यादा सक्षम होता है उस चीज़ को इम्प्रूव करने में जहाँ उसका यूज़ हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। पहले हम नैनो का समझते हैं। नैनो हम उसको देख नहीं पाते, पहले नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, मैं बिलियंस, एक मीटर में बिलियंस पार्ट कर देंगे तो वो नैनो पार्ट होगा, जिसको हम बहुत ही हाईली माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख पाते हैं, तो जनरली दिखता नहीं है। और ये नैनो पार्टिकल्स को आप जैसे आपने देखो, आप क्रीम यूज़ करते होंगे जनरली, तो इन क्रीम्स के अंदर आपने सुना होगा गोल्ड पार्टिकल या सिल्वर पार्टिकल्स होते, ये सब नैनो पार्टिकल्स होते, तो इनको हम देख नहीं पाते, बट ये एक नैनो पार्टिकल्स एक लेयर बना लेते हैं जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। जनरली सिल्वर्स के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। अब हम कुछ जो सस्ती क्रीम छोड़ दें, 100-200 रुपए में आती है, उसमें ये नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा कॉस्टली क्रीम में जाएंगे तो उनमें ये पार्टिकल्स होते हैं जो वो यूवी रेज या कोई भी अल्ट्रावायलेट रेज या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे बॉडी में अंदर जा सकते हैं उन्हें रोकते, तो ये इसलिए यूज़फुल होते। बाकी और फील्ड्स में भी इनका यूज़ होता है।
1: जी जी, डेफिनेटली। क्या आप ऐसा कुछ सुझाना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है वो किस तरह से युवाओं को नैनो टेक्नोलॉजी के लिए या फिर अलग अलग इनिशिएटिव्स और स्टार्टअप्स में नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, और इसमें क्या मंशा है या क्या अपेक्षा है, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं?
0: जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार भी और मध्य प्रदेश सरकार भी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केवल दो ही मेन मोटो आजकल चल रहे हैं, एक तो चल रहा है AI के ऊपर, दूसरा चल रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर, कि हमें बाहर से कुछ आयात ना करना पड़े, हम खुद ही डेवलप कर दें। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम सेमीकंडक्टर खुद बना सकते हैं, और ये इतने एफिशिएंट हो सकते हैं कि हम छोटी सी जगह पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी मशीन की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा लॉन्च कर रही है ताकि युवा इस पर अट्रैक्ट हो और इस पर काम करना स्टार्ट करें।
1: जी, तो जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे मुकाम पर हैं जब उन्हें अगर नैनो टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है तो उन्हें कौन से विषयों का चुनाव करना चाहिए उनके एकेडमिक करिकुलम के लिए, कि कौन से विषयों से होकर मंजिल ये वाली मिल सकती है?
0: बिल्कुल, देखिए आजकल गवर्नमेंट का एक नया NEP चल रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अंदर आजकल इतना टफ नहीं हो गया है कि आपको कोई एक विषय का चुनाव करना पड़े और उसी विषय के अंदर आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना पड़े। आप कोई सा विषय ले सकते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी चेंज भी कर सकते हैं, मगर फिर भी अगर आपको इस पर काम करना चाहते हैं तो आपके ऊपर आपको फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है तो आप नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपका फ्यूचर बना सकते हैं और PhD अगर आगे

0: काम कर सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया सर। इस इन एडिशन टू दिस क्या आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे?
0: तो मैं युवाओं से यही बोलूँगा कि अगर आप PhD आगे करना चाह रहे हैं, आगे पढ़ना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो इस फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। डिफेंस में भी काफ़ी ये यूज़फुल है। अभी आपने देखा होगा, एक मैं अब एग्जाम्पल और देना चाह रहा हूँ छोटा सा, कि हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो रेडार, दूसरे दुश्मन देशों के रेडार में ना है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसको और एडवांस वे में हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर आप हम इसमें आगे काम करें तो।
1: जी, तो जो लोग नेशनल सिक्योरिटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी इस फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
1: नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार राठौर, विभागाध्यक्ष NIRRR शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अभी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। क्योंकि आप नमस्कार भोपाल सुन रहे हैं, तो अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत, शास्त्रीय संगीत पर आधारित, लता मंगेशकर और

0: दूसरे दुश्मन देशों के रडार में ना आए। तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो इसको और एडवांस वे में हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर आप हम इसमें आगे काम करें तो।
1: जी, तो जो लोग नेशनल सिक्योरिटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी इस फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
1: नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार राठौर, विभागाध्यक्ष NITRRR शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अभी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। क्योंकि आप नमस्कार भोपाल सुन रहे हैं, तो अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत, शास्त्रीय संगीत पर आधारित, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

0: बन गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना बीएससी एमएससी सब किया। अब मैं मास्टर्स हूँ एनवायरमेंटल साइंसेस में, तो डिग्री से तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ, पर वो कथक का जो एक जुनून था वो कामयाब रहा तब से अब तक।
1: सीखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: आई थिंक प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो दैट वाज माय मदर, बिकॉज समहाउ माय मदर वांटेड अस टू लर्न कथक। वो चाहती थी कि हम, मैं और मेरी बहन थे, हम दोनों कथक सीखें, और उन्होंने हम लोग को एक्चुअली कथक सिखाना शुरू करा था, मतलब सिखवाना शुरू किया था। मेरी मदर का कभी उन्होंने कोई भी ऐसी कला नहीं सीखी थी, पर उनका एक मन था कि हम उनकी बेटियां सीखें। तो एक शौकिया तौर पर, और अगर मैं कहूँ मैं उस दौर से ताल्लुक रखती हूँ जिस दौर में बच्चों को म्यूजिक डांस सिखाया जाता था। उस दौर में व्हाट्सएप और ऑनलाइन कुछ भी, इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो हम लोग को हफ्ते में 3 दिन डांस म्यूजिक सीखने भेज दिया जाता था कि आप बच्चों का कुछ टाइम पास हो। तो मैं उस दौर की हूँ, तो उस दौर में हम लोगों को लखनऊ में जाहिर है कि कथक में ही भेज दिया जाता था, क्योंकि कथक के क्लासेस होते थे। तो ये मेरी मदर का एक वो था कि सीख लें, पर शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि मैं कथक को इस लेवल तक लेकर जाऊंगी या मैं आगे चल के कथक को ही करूंगी।
1: अच्छा, और
0: बट हैविंग सेड दैट, मैं कहूंगी कि उसके बाद जो कथक की खूबसूरती है वो तो मैंने तब जानी जब मैंने खुद करना शुरू किया। तब मैं ये कह सकती हूँ कि कथक अपने आप में एक इतनी खूबसूरत नृत्य भाषा ही होती है, विधा को आप कह लीजिए, पर एक भाषा है, लोगों को अभिव्यक्ति करने का एक तरीका है ना। तो फिर वो तो जब मैंने सीखा तब मैंने पाया कि ये तो बहुत ही खूबसूरत विधा है।
1: आपका पहला मंचीय प्रदर्शन कब हुआ, तो उसका भी जिक्र कीजिए।
0: एकदम पहला ऐसे तो नहीं याद है, बट हाँ, मैं आई थिंक 93-94 में मैंने फर्स्ट अपने कहना चाहिए सोलो परफॉर्मेंसेस किए थे। कई बार हम लोग कथक केंद्र में ग्रुप में गुरुजी के साथ में करते थे, वो मैं उतना नहीं काउंट करती, पर जब खुद अपने रूप में आके करना अलग चीज होती है। तो वो मेरे 93-94 के आसपास हुए थे, और 1998 में मैंने सूफी कथक की परिकल्पना करके उसको लॉन्च किया था लखनऊ में। तो वो मेरा एक कहना चाहिए कथक के फील्ड में, अगर उसको कभी हिस्ट्री में जाना जाएगा तो वो एक लैंडमार्क काम था, क्योंकि उससे पहले कभी भी सूफी विधा को कथक के साथ नहीं जोड़ा गया था।
1: ये अनोखा
0: तो ये,
1: कॉम्बिनेशन जी।
0: हाँ ये तो ये मैंने 1998 में लखनऊ में उसको सूफी कथक को लॉन्च किया था, और सन 2000 में दिल्ली में हैबिटेट में। उसके बाद फिर मैं करीब अब मेरे ख्याल में 32 या 33 देश हुए आई हूँ जहाँ पर मैं कथक की अपनी विधा को लेकर गई हूँ, लोगों तक पहुँचाया है। और उसका एक बहुत अलग रूप, क्योंकि लोग देखते हैं तो उनको एक तरह से जो अभिव्यक्ति है वो भक्ति की है, वो राधा और कृष्ण पर ही था, पर उसकी अभिव्यक्ति जो थी उसमें कवालियां थी कृष्ण पर। अब लोगों ने, जाहिर है कभी सुनी नहीं, लोग मुझसे बोल रहे थे कि हमने हमें तो पता ही नहीं था कि कृष्ण पर कवाली भी है, पर ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल परंपरा में कवालियां होती थी कृष्ण पर ओवर द इयर्स हम लोग भूल गए, हम लोगों ने उन चीजों को नहीं आगे करा। तो वो ढूंढ कर लाना, सूफी संतों ने क्या क्या लिखा, क्या चीजों पर करा, इश्क मोहब्बत की कौन सी बात करी उन्होंने, वो सब मैंने अपने कहना चाहिए अपने कला के जरिए लोगों तक पहुंचाया। तो एक तरह से बहुत फर्क नृत्य शैली बन गई, जो कि लोगों को कथक, जिस कथक की आदत थी वो कथक मेरा कथक नहीं था, तो इसलिए वो अब सूफी कथक कहलाता है।
1: जी, जो एक्सक्लूसिवली आपका अपना है।
0: तो हमारे पास बहुत सी विरासत है, जो ये खजाना हमारे पास है, ये हमारे आ, न, पहले की जनरेशन हमारे छोड़ के गई हैं, पर इसकी अब जरूरत है कि हमें इसे संजो के रखना है।
2: ये थी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री मंजरी चतुर्वेदी।

0: दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में कथक का विशिष्ट स्थान है, जो अपनी भाव भंगिमाओं, लय और अभिव्यक्ति के लिए विश्व भर में पहचान रखता है। कथक की समृद्ध परंपरा और उसके समकालीन स्वरूप पर प्रकाश डालेंगी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री मंजरी चतुर्वेदी। प्रस्तुत है उनसे हमारी ये विशेष मुलाकात।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। कथक मैंने बहुत बचपन से सीखना शुरू करा था, जब मैं शायद 8वीं क्लास में थी। लखनऊ में मेरी परवरिश हुई, तो लखनऊ घराना कथक मुझे बचपन में सिखाया गया। और फिर आगे चल के 12वीं के बाद, तब तक तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी, तो क्लास 12th के बाद फिर मैंने एक साल एक्चुअली ड्रॉप किया था। और उस साल में मैंने सुबह 8 बजे से और शाम के 7 बजे तक पूरा 10-11 घंटे कथकेन में जाके कथक नृत्य की शिक्षा ले रही थी पंडित अर्जुन मिश्रा जी से। जी, तो जी। उस दौरान वो कहना चाहिए, तब वो कथक एक जुनून जैसा

0: श्रोताओं, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन देने और साहित्यिक सृजन को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से साहित्य एकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा प्रथम पांडुलिपि अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना की विशेषताओं और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं साहित्य एकेडमी मध्य प्रदेश के निदेशक श्री विकास दवे। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: हमारे यहाँ पर साहित्य अकादमी में इन दिनों जो विज्ञप्ति निकली है वह पहली विज्ञप्ति है प्रथम कृति अनुदान योजना की। इस योजना के अंतर्गत हम लोग साहित्य क्षेत्र के उन रचनाकारों को आमंत्रण देते हैं जिनकी अब तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। सामान्यतः ऐसा होता है मेघा जी कि हम लोग लगातार लेखन करते रहते हैं, स्फुट लेखन होता रहता है, कभी पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं, कभी अन्य स्थानों पर छपते रहते हैं, और विशेष करके इन दिनों तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी लगातार लेखन कर्म करने वाले सभी रचनाकार लिखते रहते हैं। लेकिन इन स्फुट रचनाओं को संग्रहित होते होते जब एक बड़ी संख्या हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से हर साहित्यकार का एक स्वप्न होता है कि उसकी कोई पुस्तक आ जाए। तो ये योजना सामान्यतः पहले ऐसा होता था कि साहित्य अकादमी में इस योजना में आयु का बंधन हुआ करता था, और तब ऐसा होता था कि केवल युवा वर्ग के लोग ही इसमें आवेदन करते थे, और ऐसा माना जाता था कि बड़ी उम्र के लोगों की तो किताबें छप ही जाती है। लेकिन लगातार ये ध्यान में आता था कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी अवस्था 80 वर्ष की हो गई है, 85 वर्ष की हो गई है, लेकिन उनकी आज तक कोई पुस्तक नहीं छपी है। तो साहित्य अकादमी ने इन दिनों इस प्रकार के आयु के बंधन से इस पूरी योजना को मुक्त कर दिया है, और अब इस योजना के अंतर्गत सभी ऐसे रचनाधर्मी जिनकी अब तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है वो अपनी पांडुलिपि भेज सकते हैं। अब इसमें सामान्यतया जो दो तीन प्रकार की जिज्ञासा होती है उसका बगैर प्रश्न के मैं समाधान कर देता हूँ। पहला तो एक जिज्ञासा ये होती है कि क्या यह प्रकाशन साहित्य अकादमी से नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी रचनाकार की किसी प्राइवेट पब्लिशर से कोई पुस्तक आ गई है तो उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमारी तो प्राइवेट प्रकाशन से छपी है, साहित्य अकादमी से तो हमारी पहली पुस्तक होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी पुस्तक यदि प्रकाशित हो चुकी है तो उसको प्रथम कृति नहीं माना जाता है। प्रथम कृति यानी जो जीवन में पहली बार पुस्तक छप रही है, तो ऐसी पुस्तक की पांडुलिपि होना चाहिए। दूसरा एक संशय ये होता है कि किस स्वरूप में इसको देना है। तो सामान्यतः इन दिनों हम सब देखते हैं कि हम लोग मोबाइल पर, कंप्यूटर पर इन सारी रचनाओं को कंप्यूटराइज्ड करके रखते हैं। तो ऐसी कंप्यूटराइज्ड रचनाएं मोटे तौर पर एक लगभग 80-88 पृष्ठ की पुस्तक जो है वो पुस्तक आकार में ठीक लगती है, इससे कम में बहुत छोटी सी बुकलेट जैसी लगने लगती है। तो कोशिश ये करें कि लगभग 88 पेज की पुस्तक तैयार हो जाए, तो उनके प्रिंटआउट निकाल करके या तो फोटोकॉपी की शॉप्स पर ये जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है या तो वैसी स्पाइरल बाइंडिंग कर लें, या फिर केवल साधारण लेस से बांध करके भी दे देंगे तो चल जाएगा। एक सामान्य सा आवेदन उसके साथ लगता है, उस आवेदन में उल्लेख कर दें कि ये प्रथम कृति अनुदान योजना 2025 के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और साहित्य अकादमी का जो पता है, चूँकि स्वाभाविक रूप से आकाशवाणी के सारे श्रोता जो हैं ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, और यह योजना चूंकि है भी केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, तो उनके लिए मैं एक बार पता थोड़ा सा बता देता हूँ। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, बाणगंगा चौराहा।

0: और हमारे यहाँ का जो पिन कोड है वो पिन कोड है 462-0-0-1, 462-0-0-1। इस पते पर आप अपनी पांडुलिपि भेज सकते हैं, कुरियर से भी भेज सकते हैं, प्रत्यक्ष आकर के भी जमा करवा सकते हैं। इस पूरी योजना की जो अंतिम तिथि है वह अंतिम तिथि 20 जुलाई है, तो थोड़े से इस बात की चिंता करें कि 20 जुलाई के पहले पहले अपनी पांडुलिपि जमा करवा दें।
1: जी, सर वैसे तो आपने बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया और आपने इस वार्ता की शुरुआत में बता भी दिया, लेकिन हम आपसे दोबारा से ये जानना चाहते हैं आपका नज़रिया कि क्यों ज़रूरी है इस तरह के इनिशिएटिव्स जो कि प्रोत्साहन की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनका ये पहला सो अवसर होगा कि उन्होंने कुछ क्रिएट किया है वो इस तरह से पब्लिश हो, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ये एक बहुत ही यंग एज में एक माइलस्टोन की तरह होता है। तो इस नज़रिए को बताते हुए अगर आप एक मैसेज देना चाहें, क्या महत्व है हर एक की दृष्टि में इस तरह के इनिशिएटिव्स का?
0: स्वाभाविक रूप से आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगा कि जैसे एक युग था जब हमारी अवस्था के लोगों को साहित्य क्षेत्र के जो वरिष्ठ जन होते थे वो जीवन मूल्य की तरह ये सिखाते थे कि छपने के लिए नहीं लिखना है। हो सकता है कि पत्र पत्रिकाओं को आप अपने आलेख, कविता, लघु कथा, कहानी जब भेजेंगे तो वो रिजेक्ट होकर के वापस लौट सकती है, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए छपने की भूख नहीं रखना, ये एक जीवन मूल्य की तरह हमको सिखाया जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहित्यकारों को इन दिनों ये बहुत स्पष्ट रूप से लगता है कि यदि रचनाएं पर्याप्त मात्रा में एकत्र हो गई है तो उसका पुस्तक आकार में आ जाना ही ठीक होता है। और इसलिए जैसे ही पुस्तक के लायक सामग्री एकत्र होती है, हर साहित्यकार का एक स्वप्न होता है कि उसको पुस्तक के आकार में छापें। लेकिन चूंकि ये स्वाभाविक है कि इन दिनों लगातार छपाई जिस ढंग से महंगी हुई है, कागज़ की कीमतें बढ़ी है, छपाई की कीमतें बढ़ी है, इन सब के चलते पुस्तक छापना थोड़ा सा अर्थसाध्य भी हो गया है और श्रम साध्य भी हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन ने यह जो योजना तैयार की है यह इसलिए की है कि इसके माध्यम से साहित्य क्षेत्र के विशेष करके ऐसे लोगों को सहयोग हम कर सकें जो इस प्रकार के अर्थसाध्य काम को करने में थोड़ा सा अपने आप को असक्षम पाते हैं या हिचकते हैं।
1: जी, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने हमारे सभी श्रोताओं को जानकारी दी। थैंक यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: नमस्कार। भोपाल में अभी हमारे साथ है डॉक्टर विकास दवे।

0: श्रोताओं, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपके लिए सुखद और यादगार रहा होगा। कल फिर इसी समय सुबह 7:20 पर हम लेकर आएंगे एक नई सुबह, नई बातें और गीतों की सौगात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक

प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व

0: स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और

0: किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
1: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite

कार्यक्रम सुरमई सवेरा के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रेडियो के साथ हम अपनी सुबह को बनाते हैं और भी खूबसूरत।

ऊर्जावान और खुशनुमा। तो सुनिए फिल्मी गीतों के साथ कुछ रोचक और जानकारी भरी बातें।

श्रोताओं, आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना लव सॉन्ग आज से लगभग 4000 साल पहले लिखा गया था और ये सुमेरियन साम्राज्य का था। तो सोचिए प्यार का सिलसिला कितना पुराना है।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं क्या आप जानते हैं जब दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो मात्र 3 मिनट में उनके दिल की धड़कनें एक साथ चलने लगती हैं, यानी दिल सच में एक हो जाते हैं। तो क्या आपने सोचा कभी ऐसा होता है? जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही हम सुनाते रहेंगे आपको कार्यक्रम में। जब तक आप सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, सफ़र में अक्सर हम खिड़की से बाहर देखते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। और वैसे इस सफ़र से याद आया कि क्या आपको पता है कि एफिल टावर की लंबाई हर साल गर्मियों में बदल जाती है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण गर्मियों में इसकी ऊंचाई लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है, यानी एफिल टावर भी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाता है।

दोस्तों, मुस्कुराना सिर्फ दिल के लिए नहीं, चेहरे के लिए भी आसान है और अच्छा है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे चेहरे की 43 मांसपेशियां काम करती हैं, लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं तो सिर्फ 17 मांसपेशियां की ही ज़रूरत पड़ती है हमें। तो भाई, एनर्जी बचाइए ना और मुस्कुराते रहिए।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबीरा। श्रोताओं, पहली बारिश के बाद जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती

है, उसे विज्ञान की भाषा में पेट्रिकोर कहते हैं। ये मिट्टी में मौजूद एक खास बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे हमारी नाक इत्र से भी जल्दी पहचान लेती है। और बादलों को देखकर लगता है ना कि ये कोई रुई के हल्के हल्के फोहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक एक औसत क्यूलस बादल का वजन लगभग 5 लाख किलोग्राम यानी करीब 100 हाथियों के बराबर होता है, पर ये हवा में तैरते रहते हैं। यही कुदरत का करिश्मा है।

0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं हम सब अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। उसकी आंख का साइज एक टेनिस बॉल की जितना होता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अब इस कार्यक्रम को कुछ समय के लिए यहाँ पर विराम देते हैं। ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरमई सबेरा। तो कार्यक्रम को कुछ समय के लिए यहाँ पर विराम देते हैं और सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वैश्विक संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश भर से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं कि नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम को 6 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरमई सबेरा। तो अपनी सुबह को सुरमई बनाते हैं इन खूबसूरत जानकारियों और गीतों के साथ। तो श्रोताओं, आपने सुना है क्या कि खुशबू हमारी यादों को सबसे तेज़ी से ताज़ा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी पुरानी जगह या इंसान की याद हमें उसकी तस्वीर देखकर उतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी उसकी खुशबू सूंघकर आती है।

श्रोताओं, ये तो आप जानते ही होंगे कि शहद इकलौता ऐसा खाने का पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता। वैज्ञानिकों को मिस्र के पिरामिडों में 3,000 साल पुराना शहद मिला है जो आज भी उतना ही सुरक्षित और खाने लायक है। तो असली मिठास कभी बूढ़ी नहीं होती।

श्रोताओं, दुनिया की सबसे लंबी सड़क सऊदी अरब में है। हाईवे 10 नाम की ये सड़क लगभग 240 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी है, ना कोई मोड़ ना कोई घुमाव। यहाँ तो गाड़ी चलाकर थकने से ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सभी राय यहीं पर संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

असहयोग जनसाधारण में अपनी गरिमा और शक्ति की भावना जागृत करने का एक प्रयास है। ये तभी संभव है जब उन्हें ये ज्ञान कराया जाए कि यदि वे अपनी अंतरात्मा को पहचान सकें तो उन्हें पशु बल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। असहयोग बुराई में

अनजाने और अनिच्छापूर्वक भागीदारी करने के विरुद्ध किया गया प्रतिवाद है। बुराई के साथ असहयोग करना उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है जिस प्रकार अच्छाई के साथ सहयोग करना। असहयोग कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है, ये अत्यंत सक्रिय स्थिति है, हिंसक प्रतिरोध या हिंसा से अधिक सक्रिय। निष्क्रिय प्रतिरोध एक गलत संज्ञा है। असहयोग शब्द का प्रयोग मैंने जिस अर्थ में किया है उसमें इसका अहिंसक होना आवश्यक है, और इसीलिए ये न तो दंडात्मक है और न द्वेष, दुर्भावना अथवा घृणा पर आधारित है। मैं साहसपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि भगवद गीता अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच असहयोग का सिद्धांत है। यदि इसकी शाब्दिक व्याख्या की जाए तो सदउद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन को अन्यायी कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया गया था। तुलसीदास ने संतों को परामर्श दिया है कि वे असंतों की संगति से बचें। सभी धर्मों में जिस प्रकार न्यायप्रिय व्यक्तियों तथा राजाओं के साथ सहयोग करना मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है, उसी प्रकार अन्यायी व्यक्तियों और राजाओं के साथ असहयोग करने का कठोर आदेश दिया गया है। वस्तुतः विश्व के अधिकांश धर्म ग्रंथ असहयोग से भी आगे बढ़कर ये कहते हैं कि बुराई के सामने नपुंसकों की तरह घुटने टेक देने से हथियार उठा लेना बेहतर है। हिंदू धार्मिक परंपरा में असहयोग के कर्तव्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है। प्रहलाद ने अपने पिता से, मीराबाई ने अपने पति से और विभीषण ने अपने अत्याचारी भाई से असहयोग ही तो किया था। अहिंसा का पालन इस बुनियादी सिद्धांत पर टिका है कि जो अपने विषय में सही है वही समस्त विश्व के विषय में भी सही है। सभी मनुष्य मूलतः एक जैसे हैं, इसलिए जो मैं कर सकता हूं उसे हर कोई कर सकता है। सार रूप में यही अहिंसक असहयोग का सिद्धांत है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि इसके मूल में प्रेम होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को दंड देना या उसे क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। उसके साथ असहयोग करते हुए भी हमें उसे ये अनुभव करने देना चाहिए कि हम उसके मित्र हैं, और जहां भी संभव हो हमें उसकी मानवीय सेवा करके उसके हृदय को जीतने का प्रयास करना चाहिए। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग, और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल है। हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी से। स्वर है अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के। ये गीत रचना है समीर की और इसे संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत और साथियों की आवाज में, शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का। फिल्म है बागी।

जंगल लव, आइए सुनवाते हैं हम आपको इस फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। गीत रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत मनहर उदास और सलमा आगा की आवाज़ में, फिल्म है मीत मेरे मन के। ये गीत लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत है बाबुल बोस का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर

0: गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैड़न निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंद चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख था अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।

सभी सखियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता सोहनी। सखियों, आज का दिन है शुक्रवार। आज हम आपको सुनाएंगे आपके पसंदीदा गीत और साथ ही करेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस पर बात। आज हम बात करेंगे वृक्षारोपण पर। सखियों, पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जीवन का आधार है। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और संतुलित पर्यावरण आवश्यक है और यह सब हमें वृक्षों से ही मिलता है। आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और प्रदूषण हम सभी के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे समय में एक एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। आइए हम संकल्प लें कि केवल पौधे लगाएंगे ही नहीं बल्कि उन्हें बड़ा होकर वृक्ष बनने तक पूरी जिम्मेदारी से संभालेंगे, क्योंकि आज का लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और हरा भरा भविष्य देगा। तो सखियों, इसी सुंदर

0: संदेश के साथ अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा गीतों की ओर। यदि आप भी इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहती है या अपनी पसंद का गीत सुनना चाहती है तो हमें अभी फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 07552660902। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन का। चलिए देखते हैं कौन सी सखी हमसे सबसे पहले जुड़ रही है आज। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। रानू जी बताइए कौन सी
1: मूवी का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: आप मुझे अच्छे लगने लगे
1: ऋतिक रोशन वाली,
0: ऋतिक रोशन टाइटल सॉन्ग सुनना है।
1: जी जी
0: जी। आज वृक्षारोपण पर बात हो रही है तो आप हमें क्या संदेश देना चाहेगी, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है?
1: मैम, वृक्ष लगाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए शुद्ध हवा देते हैं वृक्ष,
0: सबसे बड़ी बात, सही बात है।
1: हाँ, और घर में भी मतलब थोड़ा मतलब अपने को भी अच्छा लगता है, मतलब जैसे कोई वृक्ष
0: हरा भरा, सही बात है
1: जी।
0: ठीक है रानू जी, ये आपका गीत आप तक हम ला रहे हैं
1: और ये नंदिनी आपको डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से सजीव फोन इन कार्यक्रम। तो देखते हैं अगली कौन सी सखी हमसे जुड़ना चाह रही है। आज हम चर्चा हेलो हेलो हेलो जब तक सखी हमसे जुड़ रही है हम बात कर रहे हैं वृक्षारोपण की। तो सखियों बारिश के मौसम में ही वृक्षारोपण। हेलो हेलो जी
1: मैम नमस्ते।
0: जी नमस्ते जी, कौन बात कर रही है?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: जी नंदिनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम
0: जी। कौन सा गीत सुनना चाहेगी आप?
1: आज गाना मूवी का नाम है त्रिनेत्र।
0: त्रिनेत्र मूवी का नाम जी, और उसका कौन सा गीत है?
1: मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा।
0: मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा। ठीक है, जब तक आपका गाना तैयार हो रहा है आप बताइए। हमारे यहाँ बातचीत चल रही है वृक्षारोपण की, तो वृक्षारोपण को लेके आप अपने विचार साझा कीजिए।
1: बरसात लग गई है तो हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि बारिश के मौसम में ही प्राकृतिक रूप से पानी भी मिलता है जिससे ग्रोथ अच्छी होती है, मिट्टी में नमी होती है। जी
1: जी,
0: ठीक है, आपका गाना तैयार है, इस गाने का आनंद लीजिए आप।
1: डेडिकेट रानू दीदी को और आपको
0: जी जी ठीक है, धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

सखियो, अब अगले श्रोता का इंतजार है। जब तक हम बातचीत करते हैं, वृक्षारोपण पे बातचीत चल रही है सजीव इन कार्यक्रम में। हेलो, देखते हैं कौन सी सखी जुड़ रही है। हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारी सखी का हमसे कनेक्ट नहीं हो पाया है कॉल। अगले कॉल का इंतज़ार करते हैं। सखियों, वृक्षारोपण जो है एक दिन का अभियान इसे ना समझकर हमें इसे अपनी आदत बनाना होगा। हेलो, ज़्यादा बारिश के मौसम में वृक्षारोपण जब हम करते हैं तो कई बार कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे जब कई बार ज़्यादा बारिश होती है तो जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं या वो बह सकते हैं। ज़्यादा नमी में कीड़े और अन्य रोग भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादा जल भराव लंबे समय तक रहता है तो पौधों की जड़ें भी खराब होती हैं। देखते

0: है, कौन सी सखी हमसे जुड़ रही है? कौन? हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी कौन?
1: हेलो
0: जी हेलो, कौन बात कर रही
1: हेलो
0: है जी? हल
1: जी, मैं राधा बात कर रही हूँ
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में राधा जी।
1: जी।
0: जी कौन सा गीत सुनना चाहेगी आप?
1: मूवी का नाम है मुस्कान,
0: एक बार फिर से बताएंगे मूवी का नाम?
1: मुस्कान
0: मुस्कान। मुस्कान का कौन सा गाना सुनना चाहेगी आप?
1: जाने मन के चुपके।
0: जाने मन चुपके चुपके। ठीक है, कार्यक्रम में आज चर्चा हो रही है वृक्षारोपण की दादाजी, तो आप अपने विचार हमसे साझा कर सकती है। आप बताएंगे?
1: ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं।
0: जी बिल्कुल। कुछ समस्याएं भी आती है वृक्षारोपण में बारिश के इस मौसम में, जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसके लिए आपका
1: तो
0: क्या?
1: हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए
0: जी जी बिल्कुल
1: बारिश के मौसम में
0: जी। और वृक्षारोपण के बारे में और कुछ जानकारी जो आपसे साझा करना
1: वृक्ष नहीं
0: चाहेगी?
1: काटने चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही बात है। ये आपका गाना तैयार है, लीजिए सुनिए।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं आप सजीव फोन इन कार्यक्रम। अब देखते हैं कौन सी सखी हमसे जुड़ने जा रही है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बात कर रही है?
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: अपना बात कर रही हूँ,
0: गुना से बात कर रही है जी। आप कौन सी मूवी का कौन सा गीत सुनना चाहेगी
1: मैम? मूवी का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।
0: लाल दुपट्टा मलमल का, इसका गीत
1: इसी में एक सॉन्ग है सुनी सुनी अखियों में।
0: सुनी सुनी अखियों में
1: जी मैम।
0: जी जी, और आज के हमारी बातचीत चल रही है वृक्षारोपण पे, तो आप कुछ अपने विचार साझा करना चाहेंगे हमसे?
1: जी मैम, मैं ऑलरेडी 2 पौधे लगा चुकी हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है
1: जी, और कुछ लगाना बाकी है जी, जैसे कि मतलब सब्जी वगैरह के 2-4 पौधे हैं उसे लगाना चाहती हूँ, तो अभी 2-4 लगाने।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, ये आपका गाना तैयार है।
1: ओके
0: जी, आनंद लीजिए इसका।

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैडम
0: हेलो
1: जी,
0: जी
1: नमस्ते मैडम।
0: जी नमस्ते। कौन बात कर रही हैं आप?
1: मैडम मैं अनीता बात कर रही हूँ, कानपुर
0: जी अनीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: उत्तर प्रदेश से। मैडम
0: जी जी
1: एक गाना सुनना है मेरे
0: जी
1: को।
0: बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम तुम पे मरते हैं, और इसी में एक गाना है, वो ही वाला सुनना है मैडम।
0: कौन सा वाला गीत बत के आप बोल बताइए।
1: हम आप में कुछ हो गया, ऐसा कोई गाना है मैडम।
0: अच्छा।

0: हम आप में कुछ हो गया।
1: जी मैडम जी, यही वाला यही वाला।
0: अच्छा, अब हमारे यहाँ पर बातचीत हो रही है वृक्षारोपण
1: हाँ
0: की।
1: मैडम,
0: आप बता, आपने कुछ विचार साझा कीजिए वृक्षारोपण पर।
1: मैडम मेरे यहाँ तो क्या है कि बगीचा है तो वृक्ष ही वृक्ष लगे हुए हैं,
0: जी,
1: हम लोग
0: बहुत
1: खेत
0: अच्छी
1: पर ही
0: बात है
1: रहते
0: उनकी
1: हैं।
0: देखभाल करना।
1: और
0: जी,
1: जी,
0: और
1: मैडम
0: बताइए।
1: मिल
0: जी
1: गया मेरा गाना।
0: जी आप और एक गाना और बता सकते हैं आपकी पसंद का, इसी मूवी का
1: हाँ
0: यदि हो।
1: मैडम, मूवी का नाम है बोल रहा था बोल, और गाने के बोल हैं मैं हूँ गाँव की गोरी,
0: अच्छा
1: यही वाला।
0: जी, आपका ये गीत मिल चुका है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: जी जी
0: जी
1: मैडम,
0: जी
1: धन्यवाद मैडम।
0: जी जी धन्यवाद।

सखियों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अब इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो दोस्त श्वेता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला संसार, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आप सुनेंगे राजेंद्र ब्यास का वायलिन वादन, राग है बैरागी भैरव।

0: आपने सुना राजेंद्र ब्यास का वायलिन वादन, राग था बैरागी भैरव। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आज भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश भर से आए करीब 2000 मीसा बंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके लोकार्पण की तैयारियां कर ली गई हैं। इससे आगामी 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं, साथ ही मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। और ICC महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम है आपकी फरमाइशों का और आप हमें फोन करके अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। फोन नंबर है 07552660902। इसमें 0755 हमारा STD कोड है, तो आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं रोज़ाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते मैडम
2: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
3: मैं अनिला भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से। मैडम कैसे आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, कैसी हैं आप?
3: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
3: बस पड़े पड़े फोन लगा रही थी मैडम आपको।
2: अरे वाह,
3: कर रही थी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम है आपकी पसंद का, कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
3: ये फूल दो माली का सुनवा दीजिए, पर्दा हटा दो मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई घर नहीं।
2: तो आपका गीत हमें मिल गया है कार्यक्रम में फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू मैडम।
2: तो लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।
4: ये पर

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जगत सिंह बोल रहा मैडम। जगत सिंह
0: जगत सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं जगत सिंह जी?
1: जी, मैं ग्राम पिपलिया वराई तहसील भी चला रहा है जी।
0: कैसे हैं आप?
1: मैडम जी अच्छे हैं, खाना खा लो
0: खाना खा रहे हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, तो गीत कौन सा सुनेंगे खाना खाते हुए?
1: जी मैडम, वो सुना दो, बरसात हो रही है तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात ही फिल्म को है जहाँ तक मैडम जी, सही
0: बरसात
1: पता तो नहीं आ रहा हुआ, खबर नहीं आ रही फिल्म का।
0: जी। जगत सिंह जी, गीत आपका मिल गया है, कुमार सानू की आवाज़ में है, बस आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में
1: जी
0: आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।

0: फोन करें, गीत सुने।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जयशंकर कुशवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश से। ठीक
0: कैसे हैं आप?
1: है दीदी, बहुत बढ़िया है। बड़ी मुश्किल में लगता है फोन अब।
0: हाँ, थोड़ा समय लग
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है, सारे श्रोता जो हैं कोशिश कर रहे होते हैं तो थोड़ा।
1: फिल्म का नाम है
0: जी
1: हेलो
0: हाँ बताएं।
1: डोली, सजना साथ निभाना।
0: अच्छा, डोली फिल्म का सजना साथ निभाना
1: जी
0: गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी दीदी, जी दीदी,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं।

0: मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले जी की आवाज़ में है, अब आएगा आपके रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते दीदी।
0: जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको सुनवाई देते हैं गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी, नमस्ते मैम, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ। फिलहाल
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से?
1: वैसे मेरा गांव है रामनगर बमोरी गुना मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा,
1: जी,
0: और फिलहाल आप इंदौर में हैं?
1: हाँ, फिलहाल इंदौर में हूँ मैं। यहाँ लगभग 2011 से हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, और ट्रक और बसेस बनते हैं यहाँ, मैन्युफैक्चर होता है।
0: अच्छा, वहाँ आप काम
1: जी
0: करते हैं।
1: जी जी देखिए,
0: ठीक है जी, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: मौसम बरसात का चल रहा है, तो बरसात से रिलेटेड भी आज एक फरमाइश लेकर आया हूँ मैं। उनका
0: हाँ बताएं।
1: नाम रहेगा आई मिलन की रात।
0: आई मिलन की रात।
1: सावन का महीना आया है कठा। वैसे सावन का महीना तो भी आया नहीं, लेकिन मौसम बरसात का आ गया।
0: तो आई मिलन की रात फिल्म से आपने कहा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सावन का महीना आया है।
1: हाँ जी, आया है कठा से।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये गीत हमारे पास उपलब्ध है, तो बस आपको सुनवाई देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।
1: जी, थैंक यू मैम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रेम, प्यार से नमस्कार
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ दीदी।
0: शारदा प्रसाद प्रजापति जी, मथुरा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ दीदी।

0: आपका आशीर्वाद है, माँ की बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, रेडियो से कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है। और जब आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल में फोन लगता है तो फिर कहना क्या, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है। दीदी, मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और वर्तमान में मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
1: अच्छा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
0: मेरे बच्चे जॉब में हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ। और मैं विद्युत विभाग में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ
1: अच्छा,
0: और घर में रहते हुए सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो गीत कौन सा आज सुनना चाहते हैं आप?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु झील।

0: होगा। बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत आप सुंदर करना चाहता हूँ।
1: शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए। और अब आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हेलो, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी आकाशवाणी भोपाल से बात कर रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है।
0: क्या करते हैं मनोहर जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यहीं पे अपना संगीत से जुड़ा रहता हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। इस समय धूप खिला हुआ है, उमस भरी गर्मी है।
0: तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज फिर?
1: गीत सुनना चाहते हैं जी, फिल्म का नाम है रॉकी, क्या यही प्यार है। ये हमारे दोस्त हैं हेमंत, उनके पसंद।
0: रॉकी फिल्म का गीत आप अपने दोस्त के लिए सुनवाना चाहते हैं? हेलो मनोहर जी, आपका आवाज़ आ रही है जी? शायद तकनीकी खराबी के कारण कॉल कट गया है। मनोहर जी कोई बात नहीं, गीत आपका हमारे पास उपलब्ध है, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रॉकी से।

0: नमस्कार कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। किन से बात हो रही है
1: जी? मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपका शुभ नाम तो बताइए, कितनी प्यारी आवाज आप।
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा, रक्षा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है?
1: बिल्कुल रक्षा जी, बस बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दुकानदारी दुकाने पे बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सारी दुकान है, हर चीज की दुकान है, जितना सामान मिलता है किराना स्टोर का सब सामान मिलता
0: अच्छा,
1: मिलेगा
0: किराने का सामान
1: जी।
0: रखते हैं। ठीक है फूलचंद जी, तो कौन सा गीत आज सुनना

0: चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल रक्षा जी, अभी जो है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में बादल बहुत छाए हुए हैं, काली काली बादल हैं। तो ऐसे में बार बार मन करता है कि ऐसे ही एक गीत सुन लूं।
0: जी
1: फिल्म का नाम है गजब और गीत की बोल है कि ए हवा ए घटा तुझे क्या है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
0: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल धनकर सिंह माँ और जो है आपको डेडिकेट रहेगा। और पूनम जी है कानपुर से, तो
0: जी
1: आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा ये।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
1: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
0: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल दिनकर सिंह और जो है आपको डेडिकेट रहेगा, और पूनम जी है कानपुर से
1: जी,
0: तो आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्ते, कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं सुमित बात कर रहा हूँ एमपी धार से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बढ़िया हैं, क्या चल रहा है?
1: जी अभी बस कुछ देर बाद ऑफिस जाने की तैयारी है। मेरा ऑफिस दिन में होता है 1 से शाम 7 बजे के बीच।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: मेरी किन से बात हो रही है?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: रक्षा जी,
0: जी
1: अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, चूंकि अब बरसात का मौसम कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, तो
0: जी
1: आप मुझे सुनाइएगा बरखा बहार। आशा जी की एक रचना है, ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत है ये।
0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: हाँ इसका बरखा बहार देखिए, अगर मुझे जाता है तो नहीं फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
0: ये बरसे फुहार
1: बरसे
0: है
1: फुहार, सॉरी,
0: ना?
1: हाँ
0: जी
1: हाँ यही वाला है
0: जी ये गीत तो हमारे पास है उपलब्ध।
1: और बहुत अच्छा गीत है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा गीत है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी आपको ये गीत सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज़ में, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेशे इस घंटे

0: की खास खबरें। आज मुहर्रम है, ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्ति क्विज प्रारंभ कर रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, इससे 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी की चुनौती देने की विंडो खोल दी गई है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कुल 25 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। यह मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपकी पसंद पर बेहद खूबसूरत गीत, जिसे आपने ही चुना है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आपकी पसंद यानी फिल्म एक दूजे के लिए से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस खूबसूरत गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत को सुनना चाहा था। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके पूरे राजावत परिवार ने। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीरो से। स्वर हैं रेशमा के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता उस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी थी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंटा बेले जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इसी गीत को पसंद किया था। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत और स्वर हैं विपिन सचदेवा के। ये गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है महेश किशोर का। इस गीत को सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इसी गीत को पसंद किया है। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनबर, सरला मनबर, विशाल तथा चेतन मनबर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश में अगला और अंतिम गीत पसंद करने वाले श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, स्वर हैं उदित नारायण और अनुराधा पुडवाल के।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 8वां भाग।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजयश्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजयश्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजयश्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधु को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजयश्रवा को भारतीय सेना

0: का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्त प्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा। वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है सुनिए, धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी में।
1: सावधान, सम्राट दुमित सेन पधार रहे हैं।
2: सम्राट सेन की जय हो।
3: क्या बात है, दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजय शर्मा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
4: जी सम्राट।
3: तो फिर विलंब क्यों?
4: सम्राट, इस सभा में हूं अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्रवाई होने की आवश्यकता है।
3: पत्र को पढ़ा जाए।
4: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूं अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करे और एकत्रित राजकोष का 2/3 धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद्य सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हुणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का 1/2 भाग प्रदान करते जाएं। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
3: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दें, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं। मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्ञी और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय शर्मा की क्या राय है।
4: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दें। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काटकर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
3: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहसपूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता। भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को उद्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।

0: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
1: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
0: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेयस्कर हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धन दान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे और सम्राट व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से यह कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
1: अमात्य ऋषभदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अब प्रयास ही पूर्ण हो गई हों, और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी, जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं, के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का, कुछ कल्पना है आपको? मेरे स्वयं के कानों को आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं। अमात्य, हमारे राजा महाराजाओं की इस कायरतापूर्ण अभिमत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी।
2: ठहरिए सम्राट।
1: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं। हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
2: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूं। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहां पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है। इसी राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।
1: भुवन मोहनी,
2: सम्राट, आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभदेव का सिर समर्पित है।
1: ये तुमने क्या किया? अमात्य ऋषभदेव का शिरच्छेद कर दिया?
2: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करें। मैं

काश थे सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान एक राष्ट्रीय अपमान था जिसे महामात्य द्वारा प्रस्तावित किया गया। सुनकर मैं अपने को ना रोक सकी। क्या आज राष्ट्र की वीरता सो गई है? कभी सिंहों के साथ प्रणय लीला रचाने वाली भारतीय सिंहनी नारियां असंस्कृत बर्बर नीच और लुटेरे आक्रामकों की विलास पूर्ति का साधन बनेंगी? इससे तो अधिक उपयुक्त ये होगा कि भारतीय सुंदरियों को कहा जाता कि वो अपने सतीत्व को लुटेरों की वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझें। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है। वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंहनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने?

0: इन नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है। वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं, सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंघनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने। सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी कि या तो वे समरभूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां उनके तुच्छ शरीर से विलग की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्धी बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी।
1: उठो बेटी, मेरे हृदय से लग जाओ। मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतघ्न हैं। उठो
0: सम्राट।
1: महामात ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, हूर दूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
0: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
1: भुवन मोहिनी ठीक कह रही हैं युवराज। हम आदेश देते हैं कि इन दोनों हूर दूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों, चलो।
3: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
1: अवश्य साम्राज्ञी।
3: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहनी इस गौरवमयी युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो, इस आदर्श को हमें भुवन मोहनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं, सफलता आपकी चेरी होगी, यही हमारा शुभाशीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय शर्मा, राजकुमार, हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ हूं।
0: महाराज, ये आपकी महानता है। यद्यपि आपकी सेना धारा सेना से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आपने हमारा नेतृत्व न केवल स्वीकार किया अपितु उसकी अनुशंसा भी की। महाराज, हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में हैं। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा, जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
0: परंतु हूण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य धकेलेगा।
1: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट

0: और हत्याएं कर रहे हैं।
1: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हूणों से हमारा सामना होगा।
0: ये धुनिया कैसी है?
1: लगता है हूणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
2: कूच करो।
3: अरे, भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे, ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो, कौन है? कौन है सेनापति? बोलो।
1: हम हैं सेनापति। क्या हो गया हूं अधिनायक? ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो, क्या कहते हो? आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?
3: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई योद्धा हो तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध करो। बोलो, मंजूर है?
1: मंजूर है।
3: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
1: चलो, यही सही। सैनिकों, रुक जाओ।
0: युवराज, युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
1: महाराज आदित्य सेन, हूण सेनापति अब हमसे द्वंद युद्ध करना चाहता है।
0: द्वंद युद्ध?
1: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल, आ जा हूण सेनापति। यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध कर।
3: आ जाओ, चलो, आओ आओ आओ आओ आओ।
4: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने यह क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद्व युद्ध क्यों?
5: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
4: परंतु महाराज, हूण सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है। और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
5: देखते जाओ सैनिक।
1: अच्छा, अब देख तू, अब मैं क्या करता हूं?
4: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जमकर दांव लगाया है। अरे, उन्होंने उसके अरे उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
1: अब बस, ये मेरा अंतिम प्रहार होगा। ले, संभाल इसे।
4: हूण सेनापति मारा गया। हूण सेनापति मारा गया।
2: टूट पड़ो हूण सेना पर, एक भी जीवित न बचे। टूट पड़ो, टूट पड़ो।
6: बचाओ, बचाओ, हम शरणागत हैं। हमारे प्राण बख्शो, हमारे प्राण बख्शो।
1: रुक जाओ, शरणागतों पर वार मत करो।

0: शस्त्र छीन लो और स्वदेश जाने दो।
1: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते, वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यही भारत में व्यतीत करना चाहते हैं। हमें स्थायी रूप से यही बसने की आज्ञा दीजिए।
0: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श हैं।
1: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है, स्वीकार है।
2: सेनापति विजय शर्मा की।

0: आओ पुत्र विजयश्रवा, आओ हृदय से लग जाओ। अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ, योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजयश्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट, राजकुमार विजयश्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहिनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लगो। तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट, आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार विजयश्रवा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
2: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती।
0: आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज, अब इसमें विलंब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ हैं ही, अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए LPG आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और ICC महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सवाल लेकर मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैनो इतिहास गवाह है कि जिसके इरादों में मजबूती रही उसने हमेशा जीत हासिल की। चाहे वह जीत सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भावनात्मक हो या धार्मिक ही क्यों ना हो, ऐसा ही जीत हासिल करने और शहादत का एक पर्व है मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हिजरी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम उल हराम में मनाया जाता है। बहनों, ये महीना इस्लामी समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह उन घटनाओं को भी याद करने का समय है जो इस्लाम के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा के नाम से जाना जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है। बहनों, इस महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और अनुयायियों ने 680 ईस्वी में करबला के मैदान में यजीद की सेना के खिलाफ सत्य, न्याय और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। करबला की घटना इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी मिसाल है जो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को दर्शाती है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की तानाशाही और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। इस शहादत ने मुहर्रम को शोक, सम्मान और आत्मचिंतन का प्रतीक बना दिया। इस दिन लोग काले वस्त्र पहनते हैं जो शोक का प्रतीक है,

और कई स्थानों पर ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया कर्बला में शहीद हुए लोगों की कब्रों का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे बड़े सम्मान के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। ये जुलूस शांति और एकता के साथ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग मातम करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहनों, मुहर्रम पर्व केवल शोक मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि उन लोगों को आत्ममंथन और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिद्धांतों और सत्य के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। बहनों, कर्बला की घटना आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये पर्व हमें एकजुटता, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है, जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। तो चलिए हम भी इस पर्व को मनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ में फिल्म दिल्ली 6 से ये गीत, प्रसून जोशी के गीत को संगीत से नवाजा था A.R. रहमान ने। मैनो, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वो कविता का रूप ले लेता है। कविताएं समाज, देश, राष्ट्र और कवि के आत्मा का दर्पण होती हैं। कई बार कवि समाज के हर पहलुओं को समेटते हुए अपनी कविता के मोतियों को पिरो लेता है, और ये मोती जब एक माला में पिरोए जाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं कवियत्री इंदु प्रभा खरे से उनकी कविताएं, क्रम है काव्य पाठ।
1: मेरी प्रथम रचना नारी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके आत्मसम्मान की कथा कहती है, जिसे मैं इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ। ठोकर खाकर भी अब जिसने संभल के चलना सीख लिया, अबला नहीं रही अब नारी, खुद को बदलना सीख लिया। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, हर युग में इस भूमंडल पर क्या जीती हूँ क्या हारी हूँ। मेरा जीवन शीतल छाया ममता बनकर सब पर छाया, पर कलयुग की आंधी में क्यों मेरा जीवन ही मुरझाया। इसकी रक्षा की खातिर किसने सब कुछ अपना बार दिया, किसने इसको सम्मान दिया, किसने इसका है त्याग किया। युगों युगों से नारी जो संघर्ष और अपमान झेलती आ रही है उसके लिए मैं लिखती हूँ। शतयुग में सती हुई नारी त्रेता में सीता वनहारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, जब युगों युगों तक उसको ये अपमान सहना पड़े तब उसने कलयुग में क्या स्वीकार किया उसको भी देखिएगा। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया। और जब उम्र थी खेल खिलौनों की तब बाल विवाह के फेरों ने बचपन भी जिसका छीन लिया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन जिसका रंगहीन किया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन भी जिसका रंगहीन किया। जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर शती प्रथा का नाम दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर शती प्रथा का नाम दिया, सती प्रथा का नाम दिया। मेरी इन पंक्तियों में नारी पीड़ा की कहानी समाप्त होती है और नारी शक्ति के जागृत होते ही मैं क्या लिखती हूँ सुनिएगा। लेकिन चक्र चला फिर ऐसा उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया। कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, पहचान गई जो स्वयं को जब शक्ति का फिर आवाहन किया। इसलिए अब कहती हूँ नारी को अबला मत कहना, शक्ति का सागर है नारी, फूल भी है शूल भी है, दबी हुई है चिंगारी, छेड़ोगे खाक करेगी वह अब ना अपमान।

अपमान सहेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह। श्रोताओं, अब तक आपने संघर्ष का स्वर सुना, अब प्रस्तुत है स्मृतियों और ब्रह की भावनाओं से ओतप्रोत मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारी याद में। मैं अपनी द्वितीय रचना के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ। वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है। सुनिए मेरी ये रचना। तुम ही

मैंने अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ। कवयित्री थी इंदु प्रभा खरे। मैंने आज की भागम भाग में हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम रात में देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं और कभी कभी तो यूं ही पूरी रात कट जाती है और नींद हमारी आंखों से दूर भाग जाती है। जी हाँ, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अत्यधिक काम का बोझ और डिजिटल दुनिया के प्रभाव के कारण कई लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं। ये समस्या आम हो चुकी है। ये केवल मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहनों, तनाव और चिंता, व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षिक तनाव नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और देर रात तक टीवी की नीली रोशनी हमारे स्कैंडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को बाधित करती है। मैनो आज की अनियमित जीवन शैली नींद की कमी का एक मुख्य कारण है। कैफीन और अल्कोहल का अधिक सेवन करने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। मैनो नींद की कमी से लगातार थकान और ऊर्जा की कमी होती है, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, ध्यान केंद्रित ना करना और मेमोरी लॉस, सिरदर्द, आंखों में भारीपन और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यदि नींद की कमी को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो कई सारी गंभीर बीमारियां हमें अपने गिरफ्त में ले सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का बढ़ जाना, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होना, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, डायबिटीज टाइप 2 की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षमता में कमी आती है, व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वाहन चलाते समय। नींद की कमी से बचने के लिए सोने और जागने का समय आपको निर्धारित करना ही होगा। डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग सीमित करना होगा। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से आपको दूरी बनानी होगी। सोने के लिए अंधेरे और शांत वातावरण में रहना होगा। कमरे का तापमान भी नियंत्रित रखना होगा। योग और मेडिटेशन, ये दो ऐसे रामबाण हैं जिसका उपयोग करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं की तो हम यूं ही पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे, कुछ इस तरह से।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया था आरडी वर्मन ने। मैंने आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों में हमारी स्किन तो रूखी हो ही जाती है, हमारे बाल भी तेज धूप के कारण और पसीने के कारण झड़ने लगते हैं और हमारे बालों को भारी नुकसान भी गर्मी के मौसम में होता है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सल्फेट मुक्त और हाइड्रेटिंग शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप मेथी को भिगोकर और एलोवेरा जेल को मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर दोनों को अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपको ठंडक भी मिलेगी और बालों का रूखापन भी कम होगा और बाल झड़ेंगे भी कम। बाहर निकलते समय सिर को स्कार्फ या टोपी से ढकना बहुत ज़रूरी है और पर्याप्त मात्रा में जो पेय पदार्थ है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, पानी है और इसके अलावा खीरा है, इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट में शामिल भी करना होगा। नियमित रूप से हमें ट्रिमिंग करवाना चाहिए। बालों के दो मुहे सिरों को कटाने से बाल कम उलझते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं और उनमें वृद्धि भी होती है। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए और बालों की यूवी सुरक्षा के लिए स्प्रे या सीरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा ठंडे या सामान्य पानी का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा गर्म पानी से बाल ना धोएं क्योंकि बालों की जड़ें गर्म पानी के संपर्क में आते ही कमज़ोर हो जाती हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे, मछली, दालें और हरी सब्जियों को भी हमें शामिल करना होगा। बाल धोने से पहले तेल से मालिश करें और पुदीना या एलोवेरा जैसे ठंडक देने वाले बालों के मास्क को आप लगा सकते हैं। ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर जैसे हीट टूल्स का इस्तेमाल कम करें। बालों की सुरक्षा करें और खूबसूरत दिखें क्योंकि अच्छे घने लंबे काले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैंने आपसे बात करते करते मुझे समय का तो पता ही नहीं चला और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन चलते चलते दो पंक्तियां आपके साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु रैक्वार और साथियों की आवाज में।

ये गीत अभी आपने सुना बद्री प्रसाद खरे और उनकी साथियों की आवाज़ में। अब आपको सुनाते हैं अगला गीत पंचम सिंह सेंगर

और इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज।

और इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन।

रविंद्र दीक्षित की आवाज़ में सुने आपने ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी, संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ही।

गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया था आर डी वर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिल लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग

दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए

0: मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर

हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार साथियों, आपके साथ हूँ कार्यक्रम में मैं अनुजा। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए जो बड़े ही प्यार से जो आप हमें पत्र लिखते हैं वो पत्र हम आपको यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और आपके पसंद के गीत आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हम आपको सुनाते हैं पहला पत्र। हमें भेजा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास खेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार ने, साथ ही में श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, हल्ले ऋषि रेखवार ने बंडा से, और उन वो चाहते हैं, उनकी फरमाइश है कि हम उन्हें दीवार फिल्म का गीत सुनाएं। तो अब उन्होंने फरमाइश की है और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

अभी आपने सुना दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर के बोल थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने, और इस गाने की फरमाइश करी थी बंडा से लक्ष्मण रैकवार और उनके परिवार ने। तो देखिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी करी, अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और वो सुनना चाहते हैं याराना फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़, और गाने के बोल हैं छू कर मेरे मन को। जी, आपका पत्र भी हमें इसी तरह से हमारे मन को छूते हुए जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना अभी आपने गीत फिल्म याराना से, बोल थे अनजान के, और म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो आइए देखते हैं अगला पत्र हमें किसने और कहां से भेजा है। अगला पत्र हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओ मेरी महबूबा गीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म धर्मवीर से। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये फरमाइश की थी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से गजबीय परिवार ने। तो चलिए अब आपको बताते हैं अगला पत्र हमारे पास आया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने हमें ये पत्र भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत सुनाएं, जिसके गायक हैं नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो और बोल हैं प्रेम की नैया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

नीरज श्रीधर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत, नीरज श्रीधर और सुजन डीमेलो की आवाज़, और बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत दिया था प्रीतम ने और फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। और ये गीत फरमाइश की थी नेपाल पैलेस सागर से। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास अगला पत्र किसका आया है। हमें अगला पत्र भेजा है, उन्होंने नमस्कार लिखा है, तो हम आपको यहाँ से नमस्कार करते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद रोहित व मोहित और प्रतीक आर्य ने, उन्होंने नीचे लिखा है हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। अरे कष्ट नहीं, हमें बहुत सुख महसूस होता है, खुशी होती है हमारे श्रोताओं के लिए उनकी पसंद के गीत सुनाने में। तो चलिए बिना देर करे आपको गीत सुनाते हैं हमारी पसंद का, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म खाकी से, समीर के बोल थे और संगीत दिया था राम संपत ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता, वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ, आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सबसे पहले आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आपको दे दें। सबसे पहले आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी ठीक शाम 5:02 पर। वहीं शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 8 बजे, रात 8 बजे। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप ठीक रात में 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात 10 बजे सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कलाकार राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा ठीक रात में शाम 7:21 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पंचम सिंह सेंगर और साथियों की आवाज में ये गीत।

अनुराग पार की आवाज़ में सुना भी आपने गीत, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के छतरपुर के

ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमराज से,

उदित नारायण शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुना भी आपने गीत फिल्म हमराज से। सुधाकर शर्मा के बोल थे और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म कसूर से। समीर के बोल थे और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में सुना भी आपने गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, उत्तम सिंह ने संगीत दिया था और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में सुना भी आपने गीत, फिल्म प्यार तो होना ही था से समीर के बोल थे और संगीत दिया था जतिन ललित ने, और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जित से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: इसी के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे कल बेंगलुरु में नाथ प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की 517वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में भी लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 5-6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में ये गीत फिल्म आजा नचले से।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सुना आपने गीत फिल्म आजा नचले से, जयदीप साहनी के बोल थे और संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने, और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत भी आइए अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ही।

नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुना अभी आपने गीत फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से। नुसरत फ़तेह अली खान मनोज मुंतशिर के बोल थे और राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ थी। संगीत दिया था नुसरत फ़तेह अली खान और रौचक कोहली ने। और आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झूम बराबर झूम फिल्म से।

फिल्म सरफरोश से सुना आपने गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में, निदा फाजली के बोल थे और संगीत दिया था जतिन ललित ने, और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम बिन से।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म तुम विद से। फैज़ अनवर के बोल थे और संगीत दिया था निखिल विनय ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज से, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में।

फिल्म राज से सुना अभी आपने गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में नदीम श्रवण के बोल थे और संगीत था समीर का। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत। लीजिए सुनिए रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी।

0: पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजयश्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजयश्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजयश्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधु को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजयश्रवा को भारतीय सेना का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्तप्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा। वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी में।
1: सावधान, सम्राट दुमित सेन पधार रहे हैं।
2: सम्राट सेन की जय हो।
3: क्या बात है, दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजयश्रवा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
4: जी सम्राट।
3: तो फिर विलंब क्यों?
4: सम्राट, इस सभा में हूण अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्यवाही होने की आवश्यकता है।
3: पत्र को पढ़ा जाए।
4: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूण अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करें और एकत्रित राजकोष का 2/3 धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद्य सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हूणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का आधा भाग प्रदान करते जाएं। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
3: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दें, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित

0: सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं, मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्ञी और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं, मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय श्रवा की क्या राय है।
1: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दें। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काटकर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
0: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहसपूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता। भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को उद्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।
2: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
0: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
2: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेयस्कर हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धन दान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे। और सम्राट, व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से ये कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन, जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं, अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः है चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान, कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा, जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
0: अमात्य ऋषभदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अप्रयास ही पूर्ण हो गई हों, और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी, जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं, के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का? कुछ कल्पना है आपको?

0: मेरे स्वयं के कानों को आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं अमात्य। हमारे राजा महाराजाओं की इस कायरतापूर्ण हिम्मत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी।
1: ठहरिए सम्राट।
0: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं। हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
1: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूं। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहां पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है,
2: कन्या है, कन्या है।
1: इसे राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।
0: भुवन मोहनी,
1: सम्राट, आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभदेव का सिर समर्पित है।
0: ये तुमने क्या किया? आमात्य ऋषभदेव का शिरच्छेद कर दिया?
1: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करें। मैं विवश थी सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान एक राष्ट्रीय अपमान था जिसे महामात्य द्वारा प्रस्तावित किया गया। सुनकर मैं अपने को ना रोक सकी। क्या आज राष्ट्र की वीरता सो गई है? कभी सिंहों के साथ प्रणय लीला रचाने वाली भारतीय सिंहनी नारियां असंस्कृत बर्बर नीच और लुटेरे आक्रामकों की विलासपूर्ति का साधन बनेंगी? इससे तो अधिक उपयुक्त ये होगा कि भारतीय सुंदरियों को कहा जाता कि वो अपने सतीत्व को लुटेरों की वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझें। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है, वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंहनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने। सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी कि या तो वे समर भूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां उनके तुच्छ शरीर से विलग की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्थी बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी।
0: उठो बेटी, मेरे हृदय से लग जाओ। मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है।

0: जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतज्ञ हैं। उठो
1: सम्राट।
0: महामात ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, हुरदूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
3: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
0: भुवन मोहनी ठीक कह रही हैं युवराज। हम आदेश देते हैं कि इन दोनों ही हुरदूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों,
4: चलो।
5: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
0: अवश्य साम्राज्ञी।
5: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन

0: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
1: अवश्य साम्राज्ञी।
0: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहिनी इस गौरवमयी युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो, इस आदर्श को हमें भुवन मोहिनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं, सफलता आपकी चेरी होगी। यही हमारा सुभाषीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय शर्मा, राजकुमार, हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ हूं।
0: महाराज, ये आपकी महानता है। यद्यपि आपकी सेना धारा सेना से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आपने हमारा नेतृत्व न केवल स्वीकार किया अपितु उसकी अनुशंसा भी की। महाराज, हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में है। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा, जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार्ग को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
0: परंतु हूण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य धकेलेगा।
1: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं।
0: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हूणों से हमारा सामना होगा।
1: ये ध्वनियां कैसी हैं?
0: लगता है हूणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
1: कूच करो।
2: अरे, भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे, ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं, तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो, कौन है? कौन है सेनापति? बोलो।
0: हम हैं सेनापति। क्या हो गया हूणों अधिनायक? ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो, क्या कहते हो? आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?
2: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई योद्धा हो तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध करो। बोलो, मंजूर है?
0: मंजूर है।
2: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
0: चलो, यही सही। सैनिकों, रुक जाओ।
1: युवराज, युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
0: महाराज आदित्य

0: थेर, हूण सेनापति अब हमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है।
1: द्वंद्व युद्ध?
0: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल आ जा हूण सेनापति, यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध कर।
2: आ जाओ, चलो आओ आओ आओ आओ आओ।
3: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने यह क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद्व युद्ध क्यों?
4: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
3: परंतु महाराज, हूण सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
4: देखते जाओ सैनिक।
0: अच्छा अब देख तू, अब मैं क्या करता हूं।
3: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जम कर दांव लगाया है। अरे उन्होंने उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
0: अब बस ये मेरा अंतिम प्रहार होगा, ले संभाल इसे।
3: हूण सेनापति मारा गया, हूण सेनापति मारा गया।
5: टूट पड़ो हूण सेना पर, एक भी जीवित न बचे। टूट पड़ो, टूट पड़ो।
6: बचाओ बचाओ, हम शरणागत हैं, हमारे प्राण भक्षो, हमारे प्राण भक्षो।
0: रुक जाओ, शरणागतों पर वार मत करो, इनके अस्त्र शस्त्र छीन लो और स्वदेश जाने दो।
6: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते, वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यहीं भारत में व्यतीत करना चाहते, हमें स्थायी रूप से यहीं बसने की आज्ञा दीजिए।
0: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श हैं।
6: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है, स्वीकार है।
3: सेनापति विजय शर्मा की।

0: आओ पुत्र विजयश्रवा, आओ हृदय से लग जाओ। अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ, योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजय श्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट राजकुमार विजय श्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहिनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लगो। तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार

0: या शर्वा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
1: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती सम्राट।
2: आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। अब इसमें विलंब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ हैं ही। अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी का 8वां भाग। डीटीएच का ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मीडिया वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे कल बेंगलुरु में नाथ प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की 517वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

0: मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और यह समय होता है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी का। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तो हमारी आज की पहली जानकारी होगी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। साथियों, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और अवैध तस्करी को रोकना है। साथियों, मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे अनेक बीमारियां और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशे की लत व्यक्ति की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग परिवार में तनाव और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अवैध तस्करी समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। साथियों, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें इस बुराई से बचा सकते हैं। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं। इन प्रयासों से लोगों को नई दिशा मिलती है। साथियों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से इस समस्या को कम किया जा सकता है। खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करती हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। साथियों, ये दिवस नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश देता है। सभी को मिलकर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और तस्करी का विरोध करना चाहिए। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और जानकारी मुहर्रम विषय पर। साथियों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये त्याग, सत्य और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। ये नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। साथियों, इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। उन्होंने सत्य के लिए बलिदान दिया था। साथियों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसका विशेष

विशेष धार्मिक महत्व है। लोग इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, इससे त्याग की प्रेरणा मिलती है। साथियों, कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं, इनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता है, इनमें इमाम हुसैन के जीवन पर चर्चा की जाती है। साथियों, मुहर्रम हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है, ये सत्य और न्याय का संदेश भी देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं, इससे मानवता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये पर्व धैर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है, इससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथियों, मुहर्रम सभी को शांति और सद्भाव का संदेश देता है, ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। साथियों, मुहर्रम त्याग, सत्य और मानवता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है, ये हमें अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ये तो थी एक जानकारी मुहर्रम विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी।
1: रक्तदान को महादान कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता है, इसका एकमात्र स्रोत मानव शरीर ही है। इसके लिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक रक्तदाता ही उसकी सहायता कर सकता है। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोगों की दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदाता बन जाता है। रक्तदान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें ना तो धन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी विशेष साधन की। कुछ मिनट देकर हम किसी का जीवन बचाने में योगदान दे सकते हैं। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। मानव शरीर में कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार किया गया रक्तदान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। रक्तदान हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया जाए। रक्तदान करने वाला व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के सीमाओं के ऊपर उठाकर मानवता की सेवा करता है। जब किसी मरीज को रक्त चढ़ाना जाता है, तब यह नहीं देखा जाता है कि रक्तदाता कौन था। वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मानवता। आज के समय में युवाओं की भूमिका रक्तदान के लिए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। रक्तदान केवल किसी की जान बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और सेवा की भावनाओं को भी विकसित करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचाए, तो संतोष और खुशी मिलती है। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। रक्तदान एक महान कार्य है। यह निस्वार्थ सेवा, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए नया जीवन बना सकता है। एक बूंद रक्त अनेक जीवन का आशा। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। रक्तदान जीवन दान, मानवता की असली पहचान। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। खून का कोई विकल्प नहीं होता है। आपकी नसों किसी और की उम्मीद बन सकती है। आपकी नसें किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, कभी किसी की जिंदगी देकर अमीर बनाई है। जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है जब एक का रक्त दूसरों की रगों में दौड़ता है। रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है, शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे लगभग 650 कैलोरी बर्न होती हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच लाभ मिलता है। रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य और समाज के कई प्रमुख लाभ मिलते हैं। नियमित रक्तदान से खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 कैलोरी तक बर्न होती है। रक्तदान को समाज में महादान कहा जाता है, क्योंकि ये मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। मानव शरीर में रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह तो पूरी तरीके से गलत फहमी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है।

0: जिसके दान के दौरान केवल छोटा सा हिस्सा 350 से 400 मिलीलीटर ही लिया जाता है। हमारा शरीर इस खून की भरपाई कुछ ही दिनों में खुद ब खुद कर लेता है। रक्तदान करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे शरीर में नए रक्त कण का निर्माण होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान है सबसे बड़ा उपहार, इससे मिलता है जीवन को नया आधार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त किसी जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया खून किसी भी जरूरतमंद की रगों में दौड़कर उसकी जान बचा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो नियमित रूप से रक्त दान करें। हमारा छोटा सा प्रयास यह है कि घर का चिराग बुझने से बचा सकता है और समाज का अनमोल कड़ी की मजबूत कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आज दुनिया में कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन वह प्रयोगशाला में खून बनाने में अब तक असमर्थ है। प्रगति ने यह व्यवस्था केवल इंसानी शरीर के भीतर ही रखी है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर आज अस्पताल में किसी जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीज को खून की आवश्यकता है, तो उसकी जान केवल दूसरा इंसान के खून से ही बचाई जा सकती है। यही कारण है रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं बल्कि महादान और जीवन दान का दर्जा दिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो केवल कुछ मिलीलीटर तरल पदार्थ नहीं ले देते, बल्कि किसी निराश परिवार को उम्मीद, किसी बच्चे को उसका माता पिता और किसी माता पिता को उसका बच्चा सौंपते हैं। आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्त दान करने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। विज्ञान और डॉक्टरों के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। एक स्वस्थ के शरीर में लगातार पुराना खून नष्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। जब हमारे रक्तदान करते हैं तो हमारे बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और तेजी से नई स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। दान किए गए रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की पूर्ति हमारे शरीर 24 से 48 घंटों में पानी और तरल पदार्थ के माध्यम से कर लेता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार, शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। निशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्तदान करने से पहले हर दाता के खून की कई महत्वपूर्ण जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV आदि बिल्कुल मुफ्त की जाती है, जिससे अनजाने में भी सही शरीर की सेहत का पता चल जाता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई मजहब, जाति या रंग नहीं होता है। नस में बहने वाला लाल रंग यह कतरा हर इंसान का एक जैसा ही होता है। किसी हिंदू का रक्त किसी मुस्लिम की जान बचा सकता है और किसी अमीर का रक्त किसी गरीब का काम आ सकता है। यह बिना किसी भेदभाव के समाज को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आपका रक्तदान किसी के चेहरे की मुस्कान। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। हमें अस्पतालों में खून की कमी के कारण किसी को दम तोड़ते हुए देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रक्तदान को हमें जीवन का एक नियमित हिस्सा और कर्तव्य बनाना चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी रक्तदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पुनीत कार्य के जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है। अगर गहराई से सोचा जाए तो ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं, जिसमें से जीवन सबसे अनमोल है। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को ऐसी क्षमता दी है जिससे वह दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखकर दोबारा जीवन का उपहार दे सकता है। इसी क्षमता का नाम है रक्तदान।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अंशिका चतुर्वेदी। तो साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे जीवन संभव हो पाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, वे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथियों, वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे जल की उपलब्धता बनी रहती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, इससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है। साथियों, वृक्ष अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, वे जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। साथियों, पेड़ गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, इससे जलवायु संतुलित रहती है। वृक्ष फल फूल लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही

उपयोगी है। साथियों, वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ती है और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे पर्यावरण आकर्षक बनता है। साथियों, अधिक वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथियों, वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है। ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड। पदों की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 एवं अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ अब दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:33 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कमांडर में मनहर उदास और साथियों को अनजान का लिखा हुआ गीत है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत है।

इस गमजदा गाने के बाद में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आग और शोला फिल्म का। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। सुनते हैं गीत।

आग और शोला, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अग्नि से, आवाज मोहम्मद अजीज, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चालबाज से, आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ कविता कृष्णमूर्ति की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम चालबाज।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:55 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
3: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त हमारी घड़ी में 5:58 हुए हैं और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर आरंभ किया है। इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आज बेलकास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:00 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका

0: स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ।

0: उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
2: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे

0: स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए

0: प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
1: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
4: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
4: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
6: सूरज।
4: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
4: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
7: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
4: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
4: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
4: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
4: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
4: एकदम सही एकदम सही।
8: वो हमें धूप भी देता है।
4: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
4: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
4: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
8: और
4: अच्छे।
8: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
4: हाँ बिल्कुल,
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
4: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
4: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
4: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
7: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
4: हाय हाय, क्या बात है चंदा।

0: मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
1: वो बहुत बड़ा भी होता है,
0: बहुत बड़ा होता है,
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
3: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
3: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
3: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
3: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
3: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
3: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना, जल्दी आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: डर जाती है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे,
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव DTH ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभिलाषा फिल्म का एक गाना। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और RD बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म रातों के राजा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना है फिल्म शान से, आवाज़ किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और साथियों की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: ये गाना था फिल्म हमराज का, आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था, रवि का संगीत था। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। यह समय होता है हिंदी में समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें हिंदी में समाचार के लिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
4: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
3: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा

उपकरण वायुसेना के दो MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। आइए कार्यक्रम विवरण हम आपको बताते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। 8 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। 9:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10 आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूनिया धनाश्री। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम जो आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होना है। अब हम नजर डालते हैं कल यानी शनिवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रम। 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। 12 का समय है आपकी फरमाइश का और 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहनी की नवी कड़ी। 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति हैं। दोपहर 2 आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: हम आपको याद दिला दें कि कल आप 2 बजे फिल्म संगीत सुन सकते हैं, 5:33 पर सुन सकते हैं, शाम 6 बजे सुन सकते हैं और रात 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं और दोपहर 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा रोज की तरह 7:21 पर होगा और 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रकृति की बात आपके साथ, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। और 9:30 पर विज्ञान भारती, ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे का समय है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रम और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। 7:20 पर सुबह आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्चना सिंह के गाए बघेली लोकगीत 9:15 पर। इनसे मिलिए, ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता चित्रकार और बाल साहित्यकार अनिता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत। 10 बजे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत रत्नाकर व्यास का सरोद पर बजाया राग नट भैरव। और कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को

0: को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
3: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं।

विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबरला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:21 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

राम राम स्वीकारें ग्राम सभा के सभी श्रोता मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की संजय बिरिया है भैया। और मानसून आ चुको है मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में, बरसात भी हो रही है और कहीं कहीं प्री मानसून जेखो कहते हैं, बाकी बरसात भी हो रही है। मनो हम सब को सावधान रहने हैं कि पानी तो गिरन लगो, मनो हम गलती जा कर देते हैं कि देखा देखी में जल्दीबाजी में बोनी कर देते हैं, तो बोनी करते टाइम हमें थोड़ी धीरज रखने हैं। जब हमारे खेत की भूमि में 9 इंच तक पानी चलो जाए, 4 से 9 इंच पानी जब आ जाए तो हम बुआई करें। पता चल रहा हो कि तनक सी बूंदें पड़ी, पड़ोसी ने बो दो तो हमने भी बो दो। अब भैया कहता ना कि आशा से आसमान टिको है, जब बात तो सही है, हमें आशा लगाए रखना चाहिए कि अच्छो पानी गिरे। मनो पानी जब तक पर्याप्त जमीन में ना हुए तब तक बुआई ना करें, बुआई जब भी करें बीजोपचार करके करें, अंकुरण परीक्षण भी करके करें और पूरी तरह से सावधानी पूर्वक बुआई करें। अच्छा एक बात और है भैया कि किसानों के लाने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में आपने खूब सुनोई है, जो कहा है जो आज की जो परिस्थिति खेतों में है किसानों के लाने वही के लाने बनाई गई है। किसानों को जागरूक करो जाए, किसानों का बताओ जाए कि भैया

0: या खेती कर वो बड़ी चतुराई को काम है, विज्ञान जैसो काम है, जाकी शुरुआत 2007-08 में करी गई थी और जाको उद्देश्य जो ही है कि धान, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, तिलहन, इनको उत्पादन बढ़ाओ जाए, इनके बारे में जो किसान इनको बताओ जाए कि कैसी तकनीक अपना के हम उत्पादन बढ़ा सकत हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी दी जाए, उन्नत बीज उर्वरक की जानकारी दी जाए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ावे की जानकारी दी जाए और किसानों की आय बढ़ाई जाए। एक और हम आपको बता देवे कि जब आप वैज्ञानिक विधि से खेती करो तो निश्चित रूप से उत्पादन आपको ज्यादा मिल है। एक संदेश सुना थे, ओके बाद आगे की बात करें।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: बात हम कर रहे थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की और ई के तहत भैया प्रमाणित बीज, उन्नत बीजों पे अनुदान किसानों को दव जाते हैं, कृषि यंत्रों के लाने सहायता प्रदान करी जाते हैं, सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के बारे में भी किसानों का बताव जाते हैं, पौध संरक्षण, पोषक तत्व प्रबंधन जैसी चीज़ों के बारे में भी किसानों को बताव जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं और एक लाने जरूरी जो है कि आप अपने पास के नगर पंचायत, कृषि विज्ञान केंद्र, तहसील कार्यालय में जाएं और जाके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें और लाभ प्राप्त करें। भैया देखो, खेती किसानी में लापरवाही अगर हम जरा सी भी कर दें तो नुकसान हमरो होने हैं। अगर हम जागरूक हुई हैं, अगर हम सोच समझ के सही टाइम पे सही काम करें तो निश्चित हमें उत्पादन अच्छा मिलने हैं, जहाँ बात तय है। मनु, हमको एक बात और भी ध्यान रखने हैं कि जो रेडियो पे हम बेर बेर आपको जो जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से देते रहते हैं उनको भी सुनत रहो। हमारे तो जो कृषि वैज्ञानिक आते हैं वे भी आपका बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, उनको सुनो, उन्हें नोट करके कहूँ रखो और सही टाइम पे बाको उपयोग करो। अब बारी है बुंदेली समाचारों की। बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कही है कि भारतीय रक्षा बलों को एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगो। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री BL वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पे लिखे एक लेख को साझा करत भयजाबाद कही। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिकों से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होवे को आह्वान करो है। वहीं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहरात भय आह्वान करो और सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री राधाकृष्णन ने ये आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ावे वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना करी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़वे को आह्वान करो है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कही कि मादक पदार्थों को खतरा भारतीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं को देश के भविष्य के लाने खतरा है। उन्हें आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध में जीत के लाने एक मंच पे एकजुट होवे के लाने आग्रह करो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: इतवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को अपने विचार साझा करेंगे, जो मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी है। कार्यक्रम को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पे करो जाएगो। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पे जाको सीधो प्रसारण होएगो। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम को प्रसारण करो जाएगो। राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन को आयोजन करोगो। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लाने संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिवारजन शामिल भए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लाने संघर्ष करे वाले वरिष्ठ सेनानियों को शाल एवं श्रीफल से सम्मान करो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आपातकाल की घटनाओं पर आधारित विशेष प्रदर्शनी को भी अवलोकन करो। आज मुहर्रम है, जो दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के लाने याद दिलाते हैं। उन्हें करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लाने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में ईके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं को अलर्ट जारी करो है। जे थे आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया, बुंदेली समाचारों के बाद ग्राम सभा में हम आपके लाने आज एक विशेष कार्यक्रम सुनवा रहे हैं। बढ़ती उम्र में महिलाओं के लिए योग का महत्व, जब विषय पे जा जो पूरी एक रिकॉर्डिंग है, स्थल रिकॉर्डिंग है, और जा में रिकॉर्डिंग सहयोग प्राप्त भव पूनम सरावगी को। भैया सुनाते हैं।
2: बढ़ती उम्र में वैसे तो सभी के लिए योग काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं और मेनोपॉज के दौरान यदि योग किया जाए तो उसको सुगम बनाया जा सकता है। इसी विषय को लेकर हमने बात की है योगा एक्सपर्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट और लाभार्थियों से, जिन्होंने हमसे अपने विचार साझा किए। योग गुरु एकता जाधव ने हमें बताया कि किस तरह से बढ़ती उम्र में मेनोपॉज के दौरान महिलाएं योग करके खुद को स्वस्थ रख सकती हैं।
3: हेल्दी एजिंग का मीन्स है कि आपकी बॉडी हर एज में फ्लेक्सिबल हो, मोबाइल हो, वो उठने बैठने के लायक हो, एक्टिव हो, आपको कोई काम करना बर्डन ना लगे, आप हैप्पीनेस के साथ पीसफुली रिलैक्स रहते हुए उस चीज को कर सको। तो यदि आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती रहती हैं। आप इतने हैप्पी और हेल्दी होते हो, फुली फिजिकली भी और मेंटली भी, तो एजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। एज आपके चेहरे से भी दिखती है, एज तो आएगी लेकिन आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है योगा करने से, बिकॉज आपका पूरा सिस्टम बहुत क्लीन होता है, पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा होता है, एक एक पार्ट, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है, बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है आपके फेस पर। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि मेनोपॉज के टाइम हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं। योगा करने से हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं काफी हद तक, कार्टिसोल का जो प्रोडक्शन है उसको काफी कम कर सकते हैं, सेरोटोनिन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम काम रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, हमारा डाइजेशन हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज मेनोपॉज के टाइम जो बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं तो हम उसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही होती है, तो यदि हम अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और अच्छा हम योग कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा है, तो वो सारी चीजें बॉडी में अब्सॉर्ब होती हैं और आपको वो समय बहुत इजीली चला जाता है। जैसे जैसे आप एज करेंगे, आपकी बॉडी यदि आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, तो आपको एंग्जाइटी और हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो आप हेल्दी एज करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं।

0: होगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एजिंग में हेल्प करेंगी, डिसीजेस नहीं होंगी। ऐसे सभी आसना जो आपके पेल्विक फ्लोर को काफी स्ट्रॉन्ग करें, ब्लड फ्लो को बढ़ाएं आपके पेल्विक फ्लोर में, वो काफी इफेक्टिव होते हैं। पेल्विक फ्लोर आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, और दूसरी चीज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आप जितना ज्यादा करेंगे वो सबसे इफेक्टिव है। यदि आप आसनास नहीं भी कर पा रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो काफी इफेक्टिव है, आपको मेंटली उस पीरियड को कट करने के लिए, उसको पास करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना, रिच इन आयरन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका के फूड में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। तो सीड्स का खाना बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन रिच इन फाइबर, फाइबर रिच फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: योग करने से लाभ प्राप्त कर रही लाभार्थी महिलाओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। योग से लाभ ले रही किरण पाठक बताती हैं।
2: मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ। मैं पूरी लाइफ बाहर कभी नहीं निकली, गृहस्थी में व्यस्त रही, लेकिन 60 क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ योगा आ रही हूँ और मुझे बहुत फायदा है। बहुत घुटनों में, बॉडी में, सब में मुझे बहुत रिलैक्स है। तब मुझे अब समझ में आया इस उम्र में कि योगा से सब होगा। घुटनों में प्रॉब्लम थी, चलने में सांस फूलना, अभी कुछ नहीं है। वेट भी बहुत लॉस हुआ है, करीबन 6-7 किलो। बहुत बेनिफिट है, मेंटल बहुत रिलैक्स है। हाँ, देखते हैं लोग तो प्रभावित होते हैं तो खींचे चले आते। कई महिलाएं मेरे साथ आ रही हैं ये बोल के कि मैं आपकी वीडियो देखी इसलिए आई। घर के अंदर 24 घंटे काम करो, काम कभी ख़त्म नहीं होता, और फिर रिलैक्स नहीं हो, चिड़चिड़ाहट है, मन खराब है, फिर आए दिन बीमार होने लगी, तो मैं योगा के लिए आई।
1: सनीला कटवा ने हमें बताया कि किस तरह से योग करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है।
3: बहुत ज़्यादा फायदा है, मेंटली भी बहुत फायदा है। पहले बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जैसे 40s के उसमें आई, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे थे, साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो रही, तो वो सारी चीज़ें मेरी शॉर्ट आउट हुई। सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों को टैकल करना, सबसे बड़ा इजीनेस होने लग गया और एक्टिवनेस बनी रही। अब कोई शिकायत नहीं है, ना कमर दर्द, ना पाँव का दर्द, कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे पहली बात तो पीस, योगा से पीस और एक स्ट्रेंथ बनती है अपनी, और मेंटली हम मतलब तैयार होते हैं फेज में जाने के लिए। एक्टिवनेस रहती है, बहुत हेल्दी मतलब अपने आप लगता है। और पहली बात तो गलत खाने की तरफ तो जाते ही नहीं है। पहले क्या होता, भूख लग रही है तो कुछ भी खाते हैं, फैटी है जो भी है, लेकिन अब हमसे खिलता ही नहीं।
1: लाभार्थी कृतिका चौक से भी योग के द्वारा अपने शरीर में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करती हैं।
4: तो मुझे योगा से काफी अच्छा लग रहा है करने के बाद से, ज्वाइन करने के बाद से। योगा में मुझे लग रहा है कि जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये सब जो होती है हमारी, तो ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं, और हमारा जो चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स होते हैं ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करता है। तो मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। अभी हम बेसिकली सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि योगा का निचोड़ है, और एग्जैक्टली ये सही बात है कि ये योगा का निचोड़ है सूर्य नमस्कार। बाकी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं।
1: गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा मैथ्यू ने हमें बताया कि हमें कौन से योग मेनोपॉज के दौरान करने चाहिए।
5: मेनोपॉज महिलाओं को जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। इस समय मासिक धर्म बंद हो जाते हैं और शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं। इसके कारण गर्मावट महसूस होना, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, जोड़ों में दर्द, थकान और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसी समस्या में योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। नियमित योग करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाएं आसान योगा कर सकती हैं, जैसे ताड़ासन। यह आसन शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ को सीधा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दूसरा वृक्षासन, यह संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तीसरा योग है भुजंगासन, यह पीठ दर्द कम करते और रीढ़ को लचीला बनाते और तनाव दूर करने में सहायक है। चौथा योग है बुद्ध कोणासन, रक्त संचार बढ़ाते हैं और शरीर को आराम देता है। योग के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तनाव कम करते हैं, मन को शांत करते हैं और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि योग हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। यदि किसी महिला को हृदय रोग, गंभीर गठिया या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं हो तो डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है बल्कि

0: की जीवन का एक नया चरण है। नियमित योग, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच के साथ हम इस अवस्था को स्वस्थ, सक्रिय और आनंदमय बना सकते हैं।
1: योगा इंस्ट्रक्टर नीलम राजपूत बता रही हैं कि किस तरह से योग हमारी कई सारी समस्याओं का एक इलाज हो सकते हैं।
2: आज के समय में जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विशेष रूप से बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके अंदर प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीजों की कमी आने के कारण उनका मसल लॉस होता है, मांसपेशियों का एक दर्द शुरू हो जाता है। और अगर दूसरी साइड हम उनकी बोन्स की बात करें तो उनकी जो हड्डियां हैं, कहते हैं ऐसा कि 30 के बाद, 30 साल के बाद कैल्शियम फॉल डाउन होने लगता है, तो कहीं ना कहीं यहीं से हड्डियों वाली समस्या शुरू हो जाती है। इनको तनाव, अनिद्रा, मूड स्विंग्स, जोड़ों में दर्द, वजन बढ़ना जैसी तमाम समस्याएं होने लगती हैं। प्राकृतिक उपाय है बिना किसी दवाई गोली के, योग का सहारा ले तो आसनों में शरीर को लचीलापन देने के लिए एक सामान्य अभ्यास किया जा सकता है, जिसमें कुछ आसन है जैसे ताड़ आसन है, ये बॉडी को एक पूरा फुल स्ट्रेस देता है, जो बॉडी में अकड़न और जकड़न होती है ये इसको ठीक कर सकता है और ये खड़े होकर किए जाने वाला। दूसरा है महिलाओं के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, खास तौर से उनका जो मंथली साइकिल होता है और साथ ही साथ जो रोजाना वो काम करते हैं एक ही पोजीशन में होते हैं, थोड़ा तनाव के कारण बॉडी में अकड़न और जकड़न रहती है, उसको 10 आसन करने की आवश्यकता नहीं है, से 10 मिनट कर लेते हैं तो उनके जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। दूसरा आसन है सेतु वंदना। आप अगर सुबह सोखे जगह हैं ऑन द बेड तो आप वहां पे भी इसको कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, लेट जाना होता है, घुटने से पैर फोल्ड करके दोनों हथेलियां अपनी जमीन पर या फर्श पे प्रेस करके और हिप्स को ऊपर उठाना रहता है और ये सेतु बंद आसन एक बनने का काम हो जाता है। मेनोपॉज एक होता है, समय पर ये खत्म होता है और एक बहुत जल्दी आने लगा है। अभी हम बात करें तो 35, 40, 45 की एज में महिलाओं को उनका महीना खत्म हो रहा है। हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत तेजी से होता है, यही समय है जब बीमारियां उनके शरीर में परमानेंट प्रवेश कर जाती हैं। इस समय वजन घटता है और बढ़ता है, उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है योग और प्राणायाम। रक्त संचार अगर अच्छा है आपका तो आपको कोई सी भी बीमारी शरीर में आएगी नहीं, मन शांत रहेगा और साथ में इससे आपके सकारात्मक विचार बने रहेंगे। एक होता है बाल आसन, बच्चों को देखा, बच्चे जब लेटे रहते हैं तो अपने हाथ पैर का मूवमेंट करते रहते हैं। एक ये है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसकी बहुत चर्चा होती है क्यों, क्योंकि ये हमारी हजार नाड़ियों से एक साथ काम करता है। ये कोई रील देख करके, कोई टीवी पे हो रहा है उसको देख के आप कर रहे हो तो ये ना करें, किसी एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर या टीचर के सुपरविजन में 3 महीने यानी 90 दिन आप इसका अभ्यास करेंगे, आप सीख भी जाएंगे और इसके सही करने का तरीका आ जाएगा। तो योग में ये एक बात बहुत सत्य है कि आप अच्छे से करोगे तो फायदे मिलेंगे, गलत तरीके से करोगे तो आपको नकारात्मक प्रभाव भी मिलेंगे, योग छोड़ता नहीं।
1: डॉक्टर आभा जैन ने हमें बताया कि किस तरह से हम योग और मेडिटेशन करके अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं।
3: देखिए, आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम सब जी रहे हैं, मतलब हम यानी ज्यादा उम्र वाले ही नहीं, बच्चों को पैदा होते से ही उनके सिर के पास मोबाइल रख दिया जाता है और जैसे ही वो मोबाइल होल्ड करने लायक होते हैं उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो ये बच्चे जो हैं ये अब किस दुनिया में रहते हैं ये तो अपन सोच ही सकते, ये रियल दुनिया में तो रहते ही नहीं है, ये पूरा मोबाइल पे जो देखते हैं और वो उसकी फास्ट दुनिया ये उसमें चले जाते हैं और जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उनके गेम्स खत्म हो गए, उनके सोशल जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे उनके दोस्त खत्म हो गए और वो किस दुनिया में रहने लगे, मोबाइल की दुनिया में। ये बच्चों के हाल नहीं है, ये जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है और अगर हम जॉब करते हैं तो उस समय हमको टाइम कम मिलता है, इसीलिए हम ये जो मोबाइल की दुनिया में जो है, जो कि एक मेरे हिसाब से तो एक दुनिया जो है जो आपका जीवन ही खराब कर रही है, आपकी बॉडी एज वेल एज आपके माइंड और आपके सोशल सर्कल सबको अफेक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप रिटायर हो जाते हैं, आपके पास अपने लिए टाइम ज्यादा होता है, बच्चे भी चले जाते हैं, वो अपना नीड छोड़ के अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, तो घर के काम में भी हमको इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो देखिए, सारी तरह की बीमारियां हार्मोनल इम्बेलेंस से लेके आपकी बोन वीकनेस से, मसल वीकनेस से, आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो भी इसके कारण कम हो जाती। तो इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, हमको

0: अपने लिए समय निकाल के योगा और मेडिटेशन, ये मतलब मजाक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अरे ये तो सब बोलते हैं, ये जहाँ जाओ तो वो बोलते हैं योगा मेडिटेशन, भाई ये तो रिक्वायरमेंट है। और इस समय की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके अपने मूवमेंट्स कम करते जा रहे हैं। तो इस समय अगर हम योगा और मेडिटेशन को अपने जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे खाना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पर मोबाइल के साथ में तो सोना भी जो है उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि रात के 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, हाँ स्क्रॉल करते रहते हैं। और जो बच्चे हैं वो आपको देखा देखी वो भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट एज वेल एज आपका भविष्य, ये दोनों खराब हो। तो सारी फीमेल्स एज वेल एज मेल्स, सबको मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले तो ये जो झूठी दुनिया से आप अपनी दुनिया में आइए। कम से कम अगर आप 40 प्लस हो गए हैं तो 40 मिनट तो आपको अपने शरीर और अपने दिमाग के व्यायाम के लिए देना है। शारीरिक व्यायाम के लिए आजकल योगा इंस्ट्रक्टर्स इतने सारे हो गए हैं कि ऑनलाइन ही आपको जो आपका जो प्रिय मोबाइल है उस पे भी आपको योगा इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको योगा करना है। और योगा ऑप्शनल नहीं है कि भाई कभी कर लिया कभी नहीं करा, आपको इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो भी एक समय तो आपके लिए निकल सकता है जब आप ये कर सकते हैं। और योगा के साथ में, योगा के बाद अगर मेडिटेशन कर लिए तो सोने पे सुहागा है। ये आपका बोन हेल्थ ऊपर से नीचे पहुंचते हैं, आपके ब्रेन का हेल्थ उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे के जाके मेमोरी लॉस होना, अल्जाइमर होना, ये बड़ा कॉमन हो गया है आजकल। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम अपने दिमाग को उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। शरीर का उपयोग करने के लिए आप सारे योगिक एक्सरसाइजेस करिए, तो उससे आपके बोन्स, लिगमेंट्स, आपके मसल्स, आपके हार्ट हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके हार्मोनल हेल्थ, ये सब अच्छी होगी। एक एज के बाद क्या आपके हार्मोन्स खत्म होने लगते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि आपकी जो बॉडी है उसको एक फेमिनाइन सारा लुक देती है, साथ में आपके सारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और आपके बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे 40 के बाद और 50 के बाद तो और भी ज़रूरी है। कुछ नहीं है तो आप घूमने निकल जाइए पैदल। शुरू में आपको ऐसा लगेगा बड़ा थकान हो रही है, बड़ी बॉडी एक हो रही है, मसल पेन हो रहा है, पर ये 10-15 दिन की बात है, उसके बाद तो आपकी बॉडी को बड़ा अच्छा लगने लगेगा। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि भाई बगैर इसके तो मुझको मज़ा नहीं आ रही है। तो आप एक्सरसाइजेस के लिए टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, फिजिकल और मेंटल। मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए आप दिमाग चलाइए, आप थोड़े पजल्स करिए, आप कुछ चीज़ याद करिए। अगर आप लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखिए, आप बुक्स रीड करिए। देखिए बुक्स रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कौन कर रहा है आजकल? ओल्ड एज पॉपुलेशन, जो कि अब घर के अंदर ही बंद हो गई है ना, कहीं सोशल सर्कल नहीं रह गया है, बच्चे अपने अपने में बिजी हो गए हैं, तो अब कोई उनको टाइम नहीं दे पा रहा है। भाई बच्चे भी अपने काम में बिजी है तो कितना टाइम देंगे। अब आपको एक अपनी अलग दुनिया बनाना है। अलग दुनिया कैसे बनाएंगे कि भाई सुबह से आप अपने फ्रेंड से मिलिए, सब लोग मिलके कहीं पे योगा करिए, कहीं एक्सरसाइजेस करिए, साथ में हंसिए, बात करिए, ज्वाइन करिए उनको। आपका डोपामिन सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, आपका जो कि आपका आपके ब्रेन हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी के लिए ज़रूरी है। और आपका जो कॉर्टिजोल हार्मोन है जो कि आपका स्ट्रेस बढ़ाता, और ये बढ़ने के साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है और आपके बॉडी के सारे हार्मोन को तोड़फोड़ मचा देता है। तो इसीलिए अब आपको अपने लिए टाइम देना है। टाइम मतलब अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स सब आपके साथ रहें, आपकी बोन हेल्थ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक एज के बाद में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी, खड़क हो जाएगी और आप सारे मूवमेंट्स जो है नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ योगा, योगा इंस्ट्रक्टर से सीखिए, मोबाइल पे सीखना उस पे सीखिए, बाहर जाके सीखेंगे तो लोगों का साथ भी मिलेगा, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: तो हमने जाना, बढ़ती उम्र में योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक बेहतरीन साधन है, बल्कि ये मानसिक शांति, जोड़ों के दर्द में राहत और संतुलन सुधारने में भी अत्यंत लाभकारी है। इसे किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और बढ़ती उम्र की सभी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है।
2: बढ़ती उम्र में महिलाओं के लिए योग का महत्व विषय पे आप जा स्थल रिकॉर्डिंग पे आराधित कार्यक्रम सुन रहे थे, और रिकॉर्डिंग सहयोग तो पूनम सरावगी को।

कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को थो। भैया अब बारी है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों की। पहलो गीत हम आपको सुनवाए देते हैं फिल्म प्यासा सावन से और गाव है लता मंगेशकर ने, और जा गीत के लाने पसंद करो है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषिका रोबिन ने। सुना थे इनकी पसंद को जो गीत आपकी पाती आपके फिल्मी गीत के अंतर्गत।

भैया आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत को जो अगलो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इखो पसंद करो है रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सबीता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से जो पत्र है। अब हम जो अगलो गीत इनकी पसंद पर सुनवा रहे हैं वो है गाँव है श्रिया घोषाल ने और फिल्म है बरसोरे मेघा।

0: क्या बात है भैया, आप लोगों ने बड़े अच्छे गीत पसंद करे थे। हमारे सभी श्रोताओं के लाने भी जरूर पसंद आए हुई हैं। आप भी ऐसे पसंद के गीत सुनना चाह रहे हैं तो हमें पत्र लिखें, ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। अब दो आज्ञा मनोज भैया को स्वीकार करो, दो ही हाथ जुड़ेगी, राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
4: धन्यवाद सोनू जी।
3: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
4: सुनो जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, UAE आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फेसिस

0: किया गया। एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज जब इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक
1: जी
0: ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया है इस बैठक के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: Guided by the vision of our Prime Minister and the BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future-ready, technologically advanced, environmentally sustainable and people-centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is, energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized, and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage, and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
0: सोनू जी, देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल। छोटा सा 3 वर्ड्स का है, लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है कि एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई या उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे है, इसके
1: जी
0: रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है, अप जाती है, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली। तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है, स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात जो होती है, खास करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, तो स्टोरेज की, कि
1: जी
0: भाई सन चला गया, विंड चली गई, उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है, लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि
1: जी
0: जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही, बट जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनी जी हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो
1: जी
0: पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है।

0: ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिस पे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की,
1: जी
0: उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने। ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
0: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं का। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं का। तो
1: जी
0: एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है वो उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना इसको, यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब CNG पे चलते हैं, तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है और बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स और या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस इस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो
1: जी
0: अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो
1: जी
0: कॉस्ट है वो कम हो जाती है,
1: जी
0: तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट थी, उससे बढ़कर आज वो 154 गीगावाट से अधिक हो गई है और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर अब की कितने गुना बढ़ चुकी है,
1: जी
0: 3 से 150, मतलब इट्स इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है। अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है और

0: अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। ग्रीन
1: जी
0: हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है, डीपीआई जो हमारा पेमेंट सिस्टम, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है। और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप की अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद समझिए।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में, दूसरी आवाज़ है इसमें आशा भोसले और साथियों की, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम है अंदाज़।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कालिया से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

तीसरी मंजिल, इस फिल्म में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां शहर और देश दुनिया की, गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर रोजाना सुनिए 5:02

पर युववाणी, युवा प्रस्तोताओं और रेडियो एंकर्स का शानदार अंदाज, युवा ख्वाबों को साकार करती सक्सेस स्टोरीज, युवा मनोभावों को व्यक्त करती कविता, कहानियां और देश विदेश की रोचक जानकारी, साथ ही दिलकश फिल्मी गाने, तो सुनना न भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने के, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए। एक रोड

0: मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक,

0: शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को

0: आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे।

0: Host Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वजीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 209,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वजीर आजम मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियार के वजीर मुमलिकत BL वर्मा का एक मजमून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हर एक शहरी पर जोर दिया।

वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मनशियात की लत को एक हसास मामला समझती है जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाविते 1945 में तरामीम की तजवीज़ की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाज़त हासिल करने वाले जाबितों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। सहल करदा जाबतों का इतलाक उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिनसी हारमोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती माहदे सीटा के फवायद को ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करना है। आज लंदन में 10वीं सालाना बरतानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बरतानिया की शराकतदारी रवायती तजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन AI, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मवाक़े के मकाम पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया सीटा दोनों ममालिक की बेहतरीन अशिया और खिदमात को एक दूसरे के लिए दस्तियाब करने पर मरकूज है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल को लंदन में मुनक़िदा सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नज़दीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नज़दीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नज़दीक थे जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेलसी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इतिहाद का ये कहते हुए एतराफ किया है कि ये मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने ताजियत का इजहार किया है। ने इस जलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक्वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद का ऐलान किया जिसके तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए जरूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्ताद का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं जिसमें 2 भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ियों के ग्रुप से बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने उनसे भारत में रुनुमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, नेज़ भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफर से भारत नेज़ भारत यूरोप

0: दी जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4, 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इतफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोता, खेल केवल प्रतियोगिता का नाम नहीं बल्कि यह अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और निरंतर संघर्ष करने की प्रेरक कहानी भी है। जब कोई खिलाड़ी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो उसकी सफलता अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब अपने नाम किया। हम बात कर रहे हैं भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल जी की। आइए उनसे उनके खेल जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मनीष जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अभिषेक जी, मध्य प्रदेश के बेस्ट लिफ्टर का जो खिताब अभी हाल ही में आपके नाम हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपनी इस उपलब्धि के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि यह उपलब्धि पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है।
1: लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खेल संस्थान के लिए, अपने जिस जिले का आप प्रतिनिधित्व करते हो, सभी के लिए एक गौरवपूर्ण पल रहा वो। और लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना आपको एक मोटिवेशन देता है
0: जी।
1: और लगातार इस टाइटल को आप कंटिन्यूसली, आप एक बार बेस्ट लिफ्टर बनना मतलब उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहता जितना कि आप एक बार बनने के बाद उस सफलता को बचाए रखना कि आप दूसरी बार भी उस टाइटल को सेव कर पाते हो और तीसरी बार भी उस टाइटल को आप सेव कर पाए। काफी अच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पल रहा वो।
0: जी जी जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, तो पावर लिफ्टिंग की ओर आपका रुझान कैसे हुआ और इस खेल में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?
1: मैं क्योंकि फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी हूं तो स्टार्टिंग से ही खेल के प्रति मेरा रुझान रहा क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता था। उसके बाद मैं फिटनेस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया
0: जी।
1: और इसके बाद धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। बॉडी बिल्डिंग के दौरान, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के ट्रेनिंग में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल को बिल्ड करने के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने मध्य प्रदेश में जो स्तर था उस स्तर से ऊपर जाने का ही टारगेट रखा मैंने। मतलब सेरू क्लासिक, मैच्योर ओलंपिया इंडिया और अर्नॉल्ड क्लासिक जैसी विश्व की जो प्रतिष्ठित स्पर्धाएं हैं उनमें रजिस्ट्रेशन किया और उनमें खेलने का प्रयास किया। उनमें खेला भी मैं, टाइटल होल्ड भी किया। इसके बाद 22-23 में जब मैं मैच्योर ओलंपिया खेलने के बाद मैंने अर्नॉल्ड क्लासिक का रजिस्ट्रेशन किया और उनने मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया, उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा उसके लिए। बट कोविड की जो वेव आई तो उसके वजह से वो कंपटीशन कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा वो एक फेज था। उसके बाद क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही 2019 से ही

0: मैं पावर लिफ्टरों को ट्रेनिंग देता था, तो धीरे धीरे धीरे फिर उस कॉम्पिटिशन के बाद मैं पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग में आ गया, और इसके बाद मैं प्रोफेशनली कम्पीट करने लगा। उसके पहले मैं कॉम्पीट नहीं करता था, सिर्फ मैं अपनी मसल को डेवलप करने के लिए ही वेट लिफ्टिंग करता था, पावर लिफ्टिंग करता था। तो इसके बाद मैं पूरी तरीके से पावर लिफ्टिंग में आया।
1: जी, ओलंपिया प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया और टॉप 6 में आपने अपनी जगह बनाई, यह अनुभव आपका कैसा रहा?
0: अमेच्योर ओलंपिया में मेरी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा जो इवेंट है वो मेरा क्लासिक फिजिक है, क्लासिक फिजिक डिवीज़न ए में आता हूँ, उसमें मुझे बॉडी वेट 80 के नीचे रखना होता है
1: जी
0: मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत ही मिनिमम डाइट में, उस समय 3-3 घंटे कार्डियो करता था डेली, 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी। बस जो प्रोग्राम था उसको शायद हम समझ नहीं पाए, क्योंकि उसमें एक पहले प्रीजजिंग होती है, प्रीजजिंग के बाद फिर फाइनल डे होता है।
1: जी जी जी।
0: तो प्रीजजिंग में मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को हर दिन मैक्सिमम पुश नहीं कर सकते
1: जी,
0: तो मैंने अपनी बॉडी को मैक्सिमम पुश नहीं किया, नॉर्मली प्रीजजिंग में मैंने किया। प्रीजजिंग के बाद जब नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छा बॉडी को पीक पे ला करके और बॉडी को एक्सट्रीमली वाटर कट करके शो के लिए गया मैं और ऑन स्टेज आया, बट जजेस ने जो रिजल्ट अनाउंस किए वो प्रीजजिंग के आधार पे कर दिए। इस वजह से मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं वहाँ पे टॉप आऊँगा, तो टॉप ना करके मैं टॉप 6 में रहा। उस समय जो कंडीशनिंग थी, उस समय जो प्रिपरेशन थी मेरी काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी अमेच्योर ओलंपिया एक छोटा कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें एशियन कंट्रीज़ के लगभग सारे, इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज़ के प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, तो एक अच्छा बड़ा स्टेज था। बड़ा स्टेज में अगर मैं देखूँ तो टॉप 6 भी आना मध्य प्रदेश और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा गौरवपूर्ण पल था।
1: जी, निश्चित तौर पर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यह जो ओलंपियाड का जो कॉम्पिटिशन होता है वो एशिया लेवल का कंपटीशन होता है और उसमें लगभग सभी देशों के काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं, और उसमें टॉप 6 तक पहुंचना निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरव के पल है आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो शायद आपको देखते हैं अपने भविष्य के तौर पे। अब जैसे मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हाल ही में जो संपन्न हुई, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
0: मध्य प्रदेश स्टेट पावर लिफ्टिंग थी, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जिला इकाइयां हैं, उनने पार्टिसिपेट किया। कॉम्पिटिटर्स थे सभी जगह के, इंदौर के थे, जबलपुर के थे, ऐसे सभी जगह के थे। मेन चीज ये है कि ये प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्पर्धा के बीच में, क्योंकि आगामी जो राष्ट्रीय स्पर्धा है वो 18 से 23 जुलाई है, ज्यादा गैप नहीं होता, तो इसलिए हम वहाँ पे अपना मैक्स परफॉर्मेंस नहीं करते हैं।
1: जी जी जी।
0: और वहाँ हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको सिर्फ वहाँ पे अपना प्लेस क्लियर करना है, जिससे हमारा सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हो जाए।
1: जी।
0: और मेरा ये हमेशा मूल मंत्र रहा है कि मैं अपने प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी को मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे इसे हराना है। मेरा ये है कि यदि अगर हम 10 लोग हैं या हम 100 लोग हैं, उसमें से जो उस दिन, उस पल, उस क्षण में जो बेहतर करेगा वही विजेता बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: मैं अपनी चीज़ें ड्यूरिंग मीट भी मैं अपने कॉम्पिटिटर से शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपेबल नहीं है या पर्टिकुलर उस टाइम उनके पास है नहीं, तो मैं शेयर करता हूँ कि आप लो, आप मेरी चीज़ यूज़ करो, आप खेलो, आप बेहतर होगे तो आप ही जीतोगे, मैं बेहतर ये दोनों तो मैं जीतूंगा।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात की। और इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आप में एक टीम भावना की बात आती है। अभिषेक जी, सामान्य इंसान को समझाना चाहे तो आप कैसे बताएंगे कि पावर लिफ्टिंग आखिर क्या होती है?
0: पावर लिफ्टिंग एक्चुअली, पावर और लिफ्टिंग, वह व्यक्ति जो कम से कम बॉडी वेट में, मतलब वजन में, और जितना ज्यादा से ज्यादा भार उठा पाए, वेट लिफ्ट कर पाए, वो होता है पावर लिफ्टर।
1: जी,
0: पावर लिफ्टिंग में 3 चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। एक कंधे पे रॉड और वजन रख करके आपको बैठना है, फिर ऊपर आना है। एक चेस्ट पे बार को लाना है और ऊपर करना है, और वेट लगा हुआ है डेडलिफ्ट, जिसको डेडलिफ्ट बोलते हैं, नीचे भार को ऊपर की ओर आना। ये 3 लिफ्टों का संगम है पावर लिफ्टिंग।
1: जी, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के बेस्ट पावर लिफ्टर आज हमारे साथ मौजूद है, और आज वो अपनी जो जर्नी है पावर लिफ्टिंग की वो आज हमसे साझा कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक पावर लिफ्टर का सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होता है?
0: देखिए, पावर लिफ्टिंग का जो प्रशिक्षण है वो स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक उद्देश्य, आप एक पहले अपना एक साल भर का आप एक उद्देश्य बनाते हो कि भाई मुझे इस साल यहाँ तक इस वजन को उठाने में सक्षम करना है अपने आप को। तो हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज की हमारी

0: ट्रेनिंग शेड्यूल होती है, है 4 डेज में हमको कौन से दिन में करना है, और हमारा सब कुछ निश्चित होता है कि आज हमें इस वजन से इतने रैप और इतने सेट्स लगाने हैं
1: जी।
0: फिर हमारी जो उस मसल को, जैसे स्क्वाट हो गई तो लेग्स हो गए, लेग्स के लिए जो सपोर्टिव एक्सरसाइजेस हैं कौन कौन सी करना है, बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, चेस्ट और चेस्ट बेंच प्रेस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है आपको, डेडलिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए कैसे करना है, तो सब कुछ सुनियोजित होता है कि ऑफ सीजन में आपको कैसी ट्रेनिंग करनी है, कब आपको हाइपरट्रॉफी फेज में रखना है, कब आपको टैपर करना है, कब आपको पीकिंग करनी है। तो ये एक प्योर कस्टमाइज एंड प्रोफेशनल कोचिंग के द्वारा ही संभव है ये स्पोर्ट्स।
1: जी जी जी जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप बहुत से ऐसे लोगों को भी इस समय तैयार कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश में काफी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप एक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। अभिषेक जी, पावर लिफ्टिंग में डाइट और पोषण की क्या भूमिका होती है?
0: पावर लिफ्टिंग में न्यूट्रिशन का महत्व उतना ही है कि जैसे शरीर है, शरीर में यदि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो
1: जी।
0: तो जब तक आपका पोषण सही नहीं होगा, आप यदि अगर रात को अच्छे से सो नहीं पाए, यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हुआ, यदि आपने कुछ ऐसी चीज खा ली कि आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अगले दिन अच्छा नहीं होगा
1: जी।
0: आपकी मसल रिकवर नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपका न्यूट्रिशन पोषण प्रॉपर होना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट खाना है, कितना फाइबर खाना है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वेट को लिफ्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 365 दिन वो काम करना है जो आम आदमी की कल्पना से परे है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खेल जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आपको ऐसा लगा हो कि अब आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है?
0: मेरी पूरी जर्नी में सबसे जो मेरा इमोशनल और टफेस्ट जो टाइम था, मैच्योर ओलंपिया में थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ नो डाउट, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी और मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग वो परिणाम नहीं आ पाया
1: जी।
0: बट अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी वो करी थी मैंने अर्नोल्ड क्लासिक USA के लिए, और उस दौरान मैं केवल 800 कैलोरीज खाता था और 3 घंटे कार्डियो करता था
1: जी जी जी,
0: और अपनी ट्रेनिंग वर्किंग सब भी कुछ करता था। तो वो वहाँ पे वीज़ा रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, उसके बाद वो कॉम्पिटिशन कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। वो पल मेरे लिए एक बहुत ही आघात देने वाला था। वही सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं उस साल इंडिया के लिए मेडल इंटरनेशनल नॉट क्लासिक USA जो मेन ओलंपिया होता है उसकी तरह ही आयोजित होने वाला एक दूसरा कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड के सारे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स उसमें आते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन में था
1: जी। बिल्कुल। और कठिन परिस्थिति मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका मंत्र क्या है?
0: मेरा सिर्फ यही सोचना है कि हर वो व्यक्ति, हर वो खिलाड़ी किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले ये ज़रूर सोचे कि वो जीत या वो हार या वो कदम जो उठा रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए है, उसके माता पिता, उसके कोच, उसके टीममेट्स, जिनने उसके खेल के लिए, उसकी उस काम के लिए उनमें यदि अगर 1% का भी सहयोग किया है तो उसके उस निर्णय से यदि अगर वो क्विट करता है, यदि वो आगे बढ़ता रहता है, वो क्विट करता है तो उसको बस दुख नहीं होगा, उनको भी दुख होगा, यदि अगर वो जीतेगा तो उसको बस खुशी नहीं होगी, उनको भी होगी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे हमेशा मोटिवेट रहती है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपने से जुड़े हुए जो मेरे इस जर्नी में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीममेट्स, उन सभी के लिए मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे मध्य प्रदेश का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल में मुझे रोशन करना है
1: जी। और भविष्य को लेकर अभिषेक जी क्या योजना है आपकी?
0: पिछले 9 सालों से मेरा एक ही उद्देश्य है, जब से मैंने एशियन जीता उसके बाद से, कि मुझे मध्य प्रदेश में पर्सन स्पेसिफिक ट्रेनिंग और मध्य प्रदेश में खेल का स्तर बढ़ाना है, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। मैं अभी आगामी जुलाई में नेशनल कंपटीशन खेल रहा हूँ, पिछली बार अपेंडिक्स की वजह से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ, और इसके बाद फिर आगामी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्लानिंग करूँगा
1: जी। अभिषेक जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को जो खासकर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
0: मेरा तो उनको सिर्फ एक ही सलाह है कि थोड़ा पेशेंस रखें। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप 70 साल 80 साल तक खेल सकते हो
1: जी जी।
0: पावर लिफ्टिंग में जूनियर, सब जूनियर, ओपन, मास्टर्स, मास्टर्स में 4 कैटेगरी होती हैं, मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4। मास्टर 4

0: साल से लेकर के ऊपर तक के कैटेगरी होती है, चाहे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, फिर 70 और प्लस।
1: जी
0: तो आप हमेशा इसे खेल सकते हो और जल्दीबाजी ना करें, मार्गदर्शन लें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे आप हमेशा खेल सकते हो। आप जॉब करते हो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद भी आप इसको खेल सकते हो।
1: जी हम यह कह सकते हैं कि पावर लिफ्टिंग केवल एक खेल नहीं है बल्कि फिटनेस के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बोला कि बिल्कुल हताश ना हो, जल्दबाजी ना करें, बल्कि इसमें किसी भी तरह की एज की किसी भी तरह का कोई बार नहीं है, तो एज से पूरी तरह से मुक्त है। तो आप जिस भी उम्र में शुरू करना चाहे अपने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में शुरू करें और इस खेल का आनंद लें। अभिषेक जी आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: अभी आपने बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जानी दुश्मन का एक गाना। इसमें दूसरी आवाज है आशा भोसले और साथियों की। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चंबल की कसम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। साहिर रिधियानवी ने इस गाने को लिखा है, खय्याम का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चंबल की कसम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। साहिर रिधियानवी ने इस गाने को लिखा है। खय्याम का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म रुस्तम से, आवाज़ है आतिफ असलम की, गीत और संगीत आरको का है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, और दूसरी आवाज है इसमें अभिजीत की। महेंद्र प्रताप सिंह का लिखा हुआ यह गाना है और निखिल विनय का संगीत है। इस गाने को किसने पसंद किया है वो हम आपको गाने के बाद सुनवाएंगे।

इस गाने के लिए फरमाइश आई थी सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। महादेव घाट अमलेश्वर से लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज कुमार ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश कुमार ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने पसंद किया था। इसी गाने के लिए छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से लिखने वाले हैं सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ। नवागढ़ कटई से लिखने वाले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में एक गाना, फिल्म का नाम है काला पत्थर। साहिर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। इसको पसंद किया है, फरमाइश हम बताएंगे गाने के बाद।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र और साथियों की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पिछले गाने की, और इन दोनों गानों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। डोंगर गांव से लिखने वाले हैं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। इसी गाने को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरारीलाल वर्मा, मनीषा वर्मा, शिवम वर्मा, मेंढकी रोड देवास से नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, मीकू और उनके साथी, और मोहसिनपुरा से जमील खान और इमरान और फरहान।

अगला गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र सिंह का लिखा हुआ गाना, शंकर जय किशन का संगीत, और फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यशवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतना मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियंशा। और इसी गाने के लिए शिवाजी चौक राजिम से लिखने वाले हैं अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। और अमरपुर पेंड्रा से लिखने वाले हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास, और ये कुछ मिटा हुआ है, जिला सागर, और लिखने वाले हैं लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, वैशाली वेश्णई, अनरथ रेखवार और ऋषि रेखवार।

और अगला गाना लिया है हमने फिल्म हाथ की सफाई से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और इस गाने को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, और इन्होंने भेजा है ये दरिया दंड हट्टा ज़िला बालाघाट से, इन्होंने ये फरमाइश के लिए भेजा है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, और साथ ही प्रतीक आर्य ने इस गाने को पसंद किया है। और इस गाने के लिए अगला ख़त भी हम शामिल कर लेते हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये ख़त शामिल हो चुका।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया राग पूर्य धनाश्री। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर पॉइंट पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाजत दीजिए, जावेद खान को जय हिंद।